आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुप्रभात, रवा सर जेकर करिनी बेसब्री से इंतजार ओ कार्यक्रम लेके हाजिर बाड़ी राउ रेडियो दोस्त दीपाली आपन दे आपन देखभाल। श्रोता लोग रोज की तरह आज भी हम लेके आयल बानी अपना साथ कुछ स्वास्थ्य वर्धक घरेलू नुस्खा जौन रखी रवा के अंदर से फिट आ रहम रवा खुशहाल। चली हम अपना कार्यक्रम के श्री गणेश करी। श्रोतागण आज हमने के जानल जाई सबसे पहले कि मोटापा आखिर काहे होला। मोटापा एगो ऐसन बीमारी है जौन स्त्री पुरुष व बच्चा केहो के भी हो सकेला। मोटापा व्यक्ति की सुंदरता नष्ट कर देला और ज्यादा मोटापा समाज में हास्यास्पद स्थिति पैदा कर देला। मोटापा कई कारण से हो सकेला, जैसे खान पान, बैठ के काम कइल, व्यायाम ना कइल आदि। कई बार मोटापा वंशानुगत भी होला। अगर परिवार में सब लोग मोटा बा तो आवे वाला संतान भी मोटा हो सकेला। जे प्रकार खांसी के कब्ज के रोग के घर कहल जाला, वैसे ही मोटापा के भी कई बीमारी के जनक मानल जाला। ब्लड प्रेशर संबंधी, गैस संबंधी, डायबिटीज संबंधी आदि कई तरह की बीमारी के संबंध मोटापा से होला। शरीर के अतिरिक्त चर्बी जम जाए पर ई प्रकट होला। मोटापा शरीर के कुछ अंग, पेट, जांग, हाथ, नितंब, कमर आदि के अनावश्यक रूप से फुलाते हुए अपना आसपास के अंग के दबावत चलल जाला। इस तरह ई पूरा शरीर के अपना कब्ज में ले लेला। एके सबसे ज्यादा प्रभाव दिल, दिल के धमनी आदि पर होला। मोटापा में दिल के आसपास धमनी में चर्बी जमा हो जाला और ई दिल के परेशानी बढ़ जाला। व्यक्ति के शरीर में चर्बी ही बढ़ेला, अन्य धातु उतना ना बढ़ेला। मोटा व्यक्ति अल्पायु तो होला ही, पुरुष त्वहीन, वीर्यविहीन, पसीना से परेशान, भूख प्यास से व्याकुल और अनेक बीमारी से ग्रस्त होला। भूख शांत करे खातिर ना खाला, बल्कि स्वादेंद्रिया के शांत करे खातिर नाना प्रकार के भोजन करेला। ऐसा भी कहल जा सकेला कि अतिरिक्त भोजन मिले पर, आराम होके पर और परिश्रम ना करे पर हमनी के शरीर में अनावश्यक चर्बी एकत्र करे लगेला। यह चर्बी मोटापा के रूप होला। शरीर खातिर आवश्यक होला, लेकिन जरूरत से ज्यादा चर्बी हानिकारक होला। चर्बी शरीर के सेल बनावे खातिर जरूरी है।

शरीर खातिर प्रतिदिन 60 ग्राम चर्बी जरूरी होला। एक चौथाई चम्मच में 9 कैलोरी होला। यही प्रकार एक ग्राम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट में मात्र 4 कैलोरी।

0: चले जानल जाओ मोटापा के कारण। मोटापा के सबसे प्रमुख कारण है आराम लीहल, अयाशी के जीवन जियल और परिश्रम ना कैल। चाहे जब भोजन कैल, भोजन में वसा, मिठाई, तेल, घी, दूध, अंडा, शराब, मांस, धूम्रपान, अन्य तरह के नशा आदि के अति कर दीहल। मोटापा फैले के कारण में भोजन में अति, भोजन के पश्चात दिन में सुतल व परिश्रम कम कैल, गर्भवती स्त्री के गर्भस्थ शिशु के नाम पर अनावश्यक खिलाते रहल। प्रसव बाद भी मेवा के अति सेवन कैल और शारीरिक श्रम कम कैल, हमेशा घर में ही बनल रहल आदि, प्राय बाहर काम करे वाला स्त्री हाउसवाइफ की अपेक्षा कम मोटा होला लो। बच्चा के मोटापा के कारण भी ये है कि माता पिता लाड़ प्यार में बच्चा की वसा, प्रोटीन से भरपूर पदार्थ अनावश्यक खिलाते रहेला। शरीर में मेद वृद्धि बचपन से ही आ जाला। कई बार दुबला माता पिता के बच्चा यही कारण मोटापा के गिरफ्त में आ जाला। शरीर के कुछ ग्रंथि भी मोटापा के कारण होला। मौलिक चयापचय के क्रिया व शारीरिक क्रियाशीलता के ऑटुका ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि के स्त्राव के कमी के वजह से मोटापा पनपेला। परंपरा भी मोटापा के कारण है। यहाँ ये नहीं कहल जा सकत मोटा माता पिता के बीच से पैदा होकर बच्चा भी मोटा ही होला। दोस्त लोग अब चली जानल जाओ मोटापा घटावे के घरेलू नुस्खा। भोजन में गेहूं के आटा के चपाती लीहल बंद करी, जौ चना के आटा के रोटी लीहल शुरू कर दी। एक अनुपात में 10 किलो चना व 2 किलो जौ होके के चाहिए। एक मिला के पिसवाली और ई आटा की रोटी खाई। इसे सिर्फ पेट और कमर ही ना बल्कि सारा शरीर के मोटापा कम हो जाए। ग्लास ठंडा पानी में 2 चम्मच शहद घोल के पिए से भी कुछ दिन में मोटापा कम होके लगेला। दुबला होके खातिर दूध और शुद्ध घी के सेवन कैल बंद कर दी, वरना शरीर में कमजोरी, रुखापन, वात विकार, जोड़ में दर्द, गैस, ट्रबल आदि होके के शिकायत पैदा होके लगी। कमर के आकार कम करे खातिर सुबह उठे के बाद या रात के सूते से पहले नाभि के ऊपर के उदर भाग के वफार के भाप से सेक करे के चाहिए। एक तपेली पानी में एक मुट्ठी अजवाइन और एक चम्मच नमक डाल के उबाले के रख दी। आज जब भाप उठे लगे तब ए पर जाली या आटा चाले वाला छलनी के रख दी। दो छोटा नैपकिन या कपड़ा ठंडा पानी में गीला करके निचोड़ ली और तह करके एक एक कर जाली पर रख के गरम करी और पेट पे रख के सेकी। प्रतिदिन 10 मिनट से कैल पर्याप्त है। ऐसा करे से कुछ दिन में पेट के आकार घटे लगी। शौच से निवृत्त होके के बाद कुछ आसन के अभ्यास करी, यानी व्यायाम करी, या प्रातः 2 से 3 किलोमीटर तक घूमे खातिर जाया करी। दोनों में से जौन भी उपाय करे के सुविधा हो सके करी। दोस्तों, रात भर अच्छा से सूते से भी मोटापा कम होला। अधिक चली और खूब सोती, यदि डाइटिंग और जिम में पसीना बहावे के बावजूद वजन बतावे वाला मशीन के सुई पीछे नहीं खिसक रहत होके तो रात के बढ़िया नींद ली। एगो अध्ययन में पावल गईल बा कि रात भर मीठा नींद सूते से भी मोटापा कम होला। एगो नया शोध के अनुसार रात के अच्छा नींद ना आवे पर वजन बढ़े और हार्मोन्स के स्तर बढ़ जाला। एकरा चलते नींद के मारे लोग के मीठा और वसा युक्त चीज खाए के ललक पड़ेला। नींद के मारे लोग के थकान और एकाग्रता की कमी से भी जूझे के पड़ेला। ऐसे एगो दुष्चक्र भी पैदा हो जाला। कमी से मीठा चीज से मन ललचेला और अपौष्टिक खाना खाए के बाद शरीर पर और चर्बी चढ़ेला। शोधकर्ता बतावेला लो कि 5.5 घंटा से लेके 8.5 घंटा तक के बढ़िया नींद और पौष्टिक आहार लेवे से वजन कम करे में सहायता मिलेला। करे के साधारण फॉर्मूला ई ना हा कि कम खाई, अधिक चली और खूब सूती। वजन कम करे खातिर खान पान के साथ ही नींद के भी अनदेखा नहीं कैल जा सकत। तो दोस्त लोग, आज खातिर बस इतना ही। तो अब हमरा के दी खुशी खुशी जाए के इजाजत। नमस्कार।
1: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0096-575।
8: नमस्कार, मैं हूं जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। शिव ऊर्जा का स्रोत है, शिव ऊर्जा को दिशा दिखाते हैं। अब आगे
9: अरे नहीं नहीं, कोई और है।
10: नील के पास भी ऐसे ही बाइक थी ना, पता नहीं अभी कहाँ होगा,
9: स्टोरी सुना रहा होगा किसी को।
11: एक्सक्यूज मी, आई थिंक आप लोग भी उसी नील की बात कर रहे हैं जिसे हम ढूंढ रहे हैं।
10: नंदू वाला नील?
11: यस एग्जैक्टली।
9: इजंट इट स्ट्रेंज कि एक आदमी कॉमन है हम लोगों की जिंदगी में, जिसकी वजह से आज आप और मैं बात कर रहे हैं। इट्स लाइक नील ने दो स्ट्रेंजर्स को मिलवा दिया।
11: यही तो है अमरनाथ की यात्रा का चमत्कार। इस सफर में हमेशा कोई ना कोई चमत्कार होता ही है, ये मैंने सुना तो था, आज एक्सपीरियंस भी कर लिया।
10: अग्रेट, क्या पता हम जैसे और लोग मिल जाएं, whose life Neil has touched?
9: तो चलें। By the way, आप कैसे आए हो यहाँ? हमारी बस ने तो हमें यहीं छोड़ दिया।
11: नो प्रॉब्लम, हमारी बस में कुछ सीट्स खाली है, साथ चलते हैं।
12: बाप रे, ये पहाड़ चढ़ना तो बहुत मुश्किल है, ऊपर से मैं अकेला कैसे चढ़ पाऊंगा।
13: आप अकेले चढ़ रहे हो अंकल, आपके साथ कोई नहीं है?
12: जी नहीं बेटा।
13: आइए मैं आपके साथ चलती हूँ, आपको मदद हो जाएगी।
12: थैंक यू बेटा, आपके घर वालों ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा लगा देख के।
13: एक्चुअली अंकल, टू बी वेरी फ्रैंक, हम भी बिगड़े हुए ही थे, और फिर मेरी लाइफ में एक लड़का आया, उसने मुझे सिखाया कि दूसरों की मदद कैसे करते हैं। बाय गॉड, मेरी तो लाइफ ही चेंज कर दी उसने।
12: बॉयफ्रेंड?
13: आई विश।
12: अच्छा अच्छा, नाम क्या है?
13: नील। नील, सी आई डोंट इवन नो हिज फुल नेम।
12: नील, वो सांवला सा, लंबा सा, हट्टा कट्टा, जो अपनी बाइक नंदू पर घूमता है, है?
13: हाँ, पर आपको कैसे पता?
12: ये देखो, नील तुम्हें अपने दोस्त की तरह कुछ सिखा कर गया, और मुझे अपने बेटे की तरह, और उसी के कहने पर तो मैं इस अमरनाथ की यात्रा पर महादेव के दर्शन करने आया हूँ।
13: दिस इज सो स्ट्रेंज अंकल, मैं भी तो उसी के कहने पर आई हूँ।
9: हे वेट, ये प्लास्टिक की बोतल आपने फेंकी ना?
14: हाँ, पर
9: तालियां।
14: सॉरी सॉरी, उठा रहा हूँ अभी, उठा रहा हूँ मैं।
15: क्या बात है यार, हमारे चर्चे यहाँ तक पहुँच गए।
9: ऑल क्रेडिट गोज टू वन पर्सन, नील, उसी ने ही तो सिखाया ये सब करना।
13: अंकल, हम यहाँ नील के कहने पर आ तो गए हैं, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? ना उसका कोई नंबर है, ना सोशल मीडिया पर है वो, पता नहीं कहाँ होगा, हमको बुलाकर खुद ही गायब है।
12: अरे ऊपर होगा शायद, पहाड़ों की चोटी पे। वैसे एक बात सुनो, हम भी पहाड़ों पे हैं, और पहाड़ों में आवाज इको होती है, इको इको इको, पता है ना है? तुम एक बार चिल्लाओगी तो चार बार आवाज आएगी है, और क्या पता उन चार बार में से एक बार आवाज नील के कानों तक पहुंच जाए।
13: नॉट अ बैड आइडिया अंकल, पर लोग मुझे पागल तो नहीं कहेंगे ना?
12: अरे कोई कुछ पूछेगा नहीं, पूछे तो बोल देना मैं शिव जी का नाम ले रही थी, उनका नाम भी तो नील ही है।
13: अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेट्स डू इट।

0: अरे कोई नील को बुला रहा है। आंटी लगता है हमारे अलावा भी नील से कोई मिलने आया है।
1: वो लड़की चिल्ला रही थी नील का नाम। जा बेटा पूछ के आना जरा, शायद वो नील का पता दे दे।
0: मैडम आप नील नील क्यों चिल्ला रहे हो, कोई घूम गया है क्या?
1: घुमा नहीं यार, पहले मिल तो जाए।
2: तुम अभी नील के नाम से चिल्ला रही थी ना, हम भी एक नील को ढूंढ रहे हैं।
3: इट्स सो स्ट्रेंज।
2: नील? नील का है? मिला नील?
1: तुम भी नील के लिए?
2: रुको देखती हूँ मैं उसे, मिल जाए बस एक बार।
4: पता नहीं हम सबका नील एक ही है या अलग अलग, पर सारे मिलके नील नाम चिल्लाए।
5: हाँ हाँ why not, ट्राई करते हैं।
6: नील
1: बेटा वो देखो, वो ऊपर पहाड़ की चोटी पे। नील बेटा,
7: लेकिन मेरे नील की नंदू तो नहीं दिख रही।
8: कम ऑन, वहाँ बाइक नहीं जाती, पैदल ही चलना पड़ता है। चलो उसे बुलाते हैं।
6: नील।
2: गाइस देखो नील हाथ दिखा रहा है।
7: हे नील।
5: हैं? ये क्या, वो तो इशारा करके आगे निकल गया।
4: अरे वो कह रहा है कि ऊपर चलो महादेव के दर्शन के लिए। इतने दूर हम लोग उसी के लिए आए हैं ना, तो चलो चलते हैं चलते हैं।
2: सही है ना, वो कम से कम 200-300 मीटर दूर होगा हमसे, इतना दूर वापस थोड़ी ना चढ़ेगा वो।
7: राइट, उससे डबल मेहनत क्यों करवाए, हम ही चलते हैं ना ऊपर।
2: Somebody just keep an eye on him, हाँ?
1: हाँ हाँ बेटा, मुझे दिख रहा है। चलो हर हर महादेव।
6: हर हर महादेव।
8: बस पहुंचने ही वाले, बस 30 मीटर और।
4: बेटा नील फिर से कुछ इशारा कर रहा है।
1: अरे वो तो गुफा में चला गया, शायद हमें भी अंदर बुला रहा है।
4: हाँ तो चलते हैं। जय बाबा बर्फानी, बोलो बम बम भोले।
7: अरे कहाँ गया मेरा नील?
4: यही कहीं होगा भीड़ में, देखो ठीक से, देखो देखो।
5: नहीं वो अंदर तो गया था ना पक्का?
1: हाँ अंदर जाते हुए तो मैंने देखा, पर बाहर आते हुए किसी ने देखा क्या?
2: नहीं, सबसे आखिरी में आई हूँ अंदर, मैंने कुछ नहीं देखा।
3: हाँ हमने भी नहीं देखा।
8: ऐसा कैसे हो सकता है, दिस इज सो स्ट्रेंज यार।
2: दिस इज इम्पॉसिबल, यही कहीं होगा।
1: कोई चेक करो ना प्लीज, कहाँ चला गया वो? बेटा वो देखो, वहाँ पुजारी दिख रहे हैं, शायद वो नील को जानते हो या उन्होंने उसे देखा हो।
3: हाँ हाँ लेट्स आस्क हिम।
2: पंडित जी आपने किसी नील नाम के लड़के को देखा है? लंबा सा है वो, नंदू पर घूमता है। ओ सॉरी, आपको नंदू कैसे पता होगा? उसके पास ना एक बाइक है जिसका नाम है नंदू, वो ना अभी अंदर आया था, शायद आप जानते हो उसे।
9: अमरनाथ में तो मैं एक ही नील को जानता हूँ बेटा, आप जिसे ढूंढ रहे हो उसे तो मैंने नहीं देखा।
8: अरे पंडित जी ऐसे कैसे, हम उसी के पीछे तो आए थे, हम जब अंदर आए उससे 2 मिनट पहले ही वो अंदर आया था।
2: पंडित जी नील ने बताया था कि वो यही रहता है अमरनाथ में।
9: बेटा अमरनाथ में एक ही नील रहता है और वो ये रहे आपके सामने, नीलकंठ।
1: ये आप क्या कह रहे हो, हमारा नील तो?
4: बेटा अब नहीं मिलेगा।
1: क्या?
4: अरे नहीं मिलेगा।
1: पर क्यों?
4: ईश्वर एक ही बार मिलते हैं, लेकिन हमको तो 2-2 बार मिले, लेकिन अब नहीं मिलेंगे।
5: अंकल क्या हो गया आपको, आप ठीक हो ना? आई गेस यू नीड सम वाटर।
8: हाँ कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो।
4: अरे बहकी बहकी बातें नहीं बेटा, सारा मैं क्या कह रहा था कि कोई तुम्हें पागल नहीं कहेगा, तुम नील कह के चिल्लाओ है। वो क्यों? क्योंकि नील किसका नाम है?
1: शिव का। तो क्या
4: वो शिव ही तो थे? शिव, भगवान शिव शंकर, जो हमारे जीवन में आए और हमारा जीवन बदल के चले गए और हमें पता भी नहीं चला। इसलिए तो कहते हैं ना कि मनुष्य बहुत अज्ञानी होता है। चलो अब सच्चे दिल से और साफ मन से जाके हम अमरनाथ का दर्शन करते हैं और हर वो बात याद रखते हैं जो भोलेनाथ हमको सिखा कर गए। बोलो हर हर महादेव।
6: हर हर महादेव।
10: क्यों बिड़ो, कैसा रहा ये सफर? कैसे लगे भोलेनाथ की कहानियां? कुछ सीखा, कुछ समझा? बिड़ो अगर हाँ तो बस एक काम और करने का, उसको अपने लाइफ में उतार लेने का। मैंने क्या सीखा बताऊं? मैंने सीखा कि शिव जीने का तरीका सिखाते हैं, शिव लोगों से मिलने का सलीका सिखाते हैं। मैंने सीखा कि जब भी तुम किसी से मिलो तो ऐसे मिलो कि तुम स्वयं शिव से मिल रहे हो, क्योंकि ना जाने किस रूप में शिव हमें मिल जाए, जैसे कि नील मिला हम सभी को। तो बाबा की हर बातों को याद रखने का, और बस याद नहीं रखने का, उसका अनुसरण करने का, उस पे अमल करने का। और मैं हमेशा अपने दिल से यही मांगूंगा कि शिव महाराज की कृपा हम सब पर बने रहे। ऐसे ही किसी मोड़ पर फिर मिलूंगा मैं, मेरा इंतजार करना, और मैं भी इंतजार करूंगा कि कब मैं फिर आपके सामने हाजिर। चल बड़ू, मिलता हूं फिर। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव।
11: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
12: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
13: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
14: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
15: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
13: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
12: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
13: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
15: कॉल करें 87 894 18744।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89733।

0: ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 620313956।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 20 सूत्री की बैठक में भोरे तथा थामे को नगर पंचायत बनाने पर बनी सहमति। अस्पताल में गंदगी पर जिलाधिकारी सख्त, परिसर की कराई गई सफाई। सारण नहर पर बनी सड़क का होगा मरम्मत। बंजारी में दिन दहाड़े एक व्यक्ति को मारी गोली, स्थिति गंभीर। हथुआ के गोपाल मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का धूमधाम से मनाया गया छठियार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज प्रदेश के कृषि मंत्री और गोपालगंज के प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा का गोपालगंज आगमन हुआ था। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन के साथ तमाम 20 सूत्री के सदस्यों सहित 20 सूत्री की बैठक की। इस दौरान बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के

संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया। शिक्षा विभाग के कमांड एंड कंट्रोल पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवेदनों का ससमय गुणवत्तापूर्ण और नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। लंबित मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने पर भी विशेष जोर दिया गया। थावे मंदिर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों की समीक्षा हुई, जिसमें संबंधित विभाग को नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान विजयपुर के कनीय अभियंता के स्तर पर कर्तव्यहीनता और लापरवाही के मामले को गंभीरता से लिया गया। प्रभारी मंत्री ने संबंधित पदाधिकारी को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सदर अस्पताल में गंदगी और जल जमाव की सूचना मिलते ही जिला पदाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया। मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने नगर परिषद एवं अस्पताल प्रबंधन को तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने और मरीजों तथा उनके परिजनों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। नगर परिषद के तरफ से सदर अस्पताल परिसर की आज सफाई भी कराई गई। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लेते हुए अस्पताल परिसर को साफ करवाया। जल जमाव की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई। जल जमाव और गंदगी को फिलहाल मशीन लगाकर साफ किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पताल परिसर में और शैक्षणिक संस्थानों में नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण साफ सफाई सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा की गई। व्यापक प्रचार प्रसार कराने और अधिक से अधिक पात्र लाभुकों को योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान DCLR सदर और हथुआ को राजस्व विभाग के सभी कर्मचारियों की रोस्टर वार सूची 20 सूत्री समिति के सदस्यों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही दाखिल खारिज और परिमार्जन से संबंधित आवेदनों का नियमानुसार समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को भी कहा गया। सारण मुख्य नहर, जो 52 किलोमीटर सेवा पथ के रूप में जाना जाता है, इसके मरम्मत को लेकर प्राकलन तैयार किया गया। जर्जर सड़क से आवागमन में परेशानी हो रही थी, अब इसकी स्वीकृति मिलते ही इस पर मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मुख्य नहर के सेवा पथ पर निर्मित कालीकृत सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए अब इसकी मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई है। सुखदेव पट्टी से भीखमपुर तक निर्मित कालीकृत सड़क की मरम्मत के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ पर सुमन हॉस्पिटल के पास आज एक व्यक्ति को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि गोली मार कर अपराधी फरार हो गए। गोली चलने की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल युवक को सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घायल युवक गोपालगंज नगर थाना के कुकुर भूका गाँव के 40 वर्षीय शैलेश यादव बताए जा रहे हैं, जो नागेंद्र यादव के पुत्र हैं। स्थानीय अस्पताल में इलाज के बाद डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। उनके गर्दन के पास गोली लगी है, जिससे उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद से परिजनों में परेशानी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक टीम का गठन किया गया है और जगह जगह CCTV कैमरे तथा आवश्यक जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। घटना का कारण अब तक पता नहीं चला है और इसमें कोई आधिकारिक बयान भी नहीं दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण का छठिहार हथुआ के गोपाल मंदिर में पूरे धूमधाम से मनाया गया। प्रसिद्ध और ऐतिहासिक गोपाल मंदिर प्रत्येक वर्ष भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना छठिहार इत्यादि का आयोजन करता है। यहाँ हथुआ राज परिवार के तरफ से कार्यक्रम का भव्य आयोजन होता है। इस वर्ष भी हथुआ राज परिवार के ही नेतृत्व में भगवान श्री कृष्ण का छठिहार पूरे धूमधाम और उत्सव के साथ मनाया गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस बल सुरक्षा में तैनात रहे, तो वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी सुरक्षा व्यवस्था को संभाला। पुलिस के नेतृत्व में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सेवा की। लोग पूरे विधि विधान से पूरे रात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद ले रहे थे। बहुत दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने इस उत्सव में हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। इस वर्ष भी स्थानीय कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने काफी उत्साह के साथ कार्यक्रम का आनंद लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी गोपाल मंदिर के नाम से ही गोपालगंज का नाम गोपालगंज पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही गोपालगंज का नाम कालांतर में हथुआ राज परिवार के तरफ से रखा गया था और तब से और गोपाल मंदिर की स्थापना से ही प्रत्येक वर्ष राज परिवार के तरफ से भगवान श्री कृष्ण का छठियार और जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जाता है।
आज जिला

0: नागरिक परिषद की भी एक उच्च स्तरीय और महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता सरकार के कृषि मंत्री और गोपालगंज के प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा ने की। इस दौरान नागरिक परिषद के संकल्पों, उद्देश्यों, दायित्वों एवं आपदा प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि देश और राज्य की राष्ट्रीय एकता अखंडता को अक्षुण बनाए रखना तथा सामाजिक समरसता एवं सद्भाव कायम रखना परिषद का मूल संकल्प है। उन्होंने कहा कि मानव जनित अथवा प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में पारस्परिक सहयोग के बल पर ही राज्य के जनजीवन को सुरक्षा प्रदान करना ही जिला नागरिक परिषद का प्रमुख उद्देश्य है। परिषद के दायित्वों पर चर्चा करते हुए बताया गया कि इस परिषद के माध्यम से उग्रवादी, आतंकवादी और विघटनकारी शक्तियों के प्रयासों को विफल करने के लिए जनमत तैयार करना है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन नीति के तहत आपातकालीन परिस्थितियों में आम जनता का सक्रिय सहयोग प्रदान करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। इस बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में आपदा मित्र, NCC, NSS, कैडेट्स, स्काउट और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का एक मजबूत सामुदायिक नेटवर्क तैयार किया गया है, जो किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा संकट या आपदा के समय तत्पर रहता है। नागरिकों के बचाव हेतु पूर्व में भी कई गतिविधियों का आयोजन किया गया है और आगे भी लगातार मॉक ड्रिल के माध्यम से ऐसे वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त चंदन यादव उर्फ बटलू यादव पिता सुरेंद्र यादव साकिन रानीपुर थाना कटिया जिला गोपालगंज को मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि कटिया विकास स्कूल के पास वाहन जाँच के दौरान शराब पकड़ी गई थी। इस मामले में आरोपी पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया था। तब से पुलिस इसे ढूंढ रही थी। अब इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने गंडक नदी से एक नाव पर भारी मात्रा में शराब पकड़ी। बताया जा रहा है कि 288 लीटर से अधिक देशी शराब है। नाव तथा शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस के जाने से पहले नाव से कूदकर तस्कर फरार हो गए, जिसके वजह से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। नाव तथा शराब को जब्त किया गया है। कटिया पुलिस ने शराब तस्करी के ही मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त छोटू शाह को भी गिरफ्तार किया। यह कटिया के कोइसा खुर्द निवासी विद्या शाह का पुत्र है। बताया जा रहा है कि कटिया के 12 चाप स्कूल के पास गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस वाहन की जांच कर रही थी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के तरफ से मोटरसाइकिल पर शराब लेकर दो लोग आ रहे थे, जिसमें पुलिस वाहन को देखकर मोटरसाइकिल छोड़कर ये लोग फरार हो गए थे। पुलिस ने पीछा करते हुए पकड़ने का प्रयास किया पर दोनों मौके से फरार हो गए। दोनों की पहचान कर ली गई और इसी मामले में एक आरोपी छोटू शाह पिता विद्या शाह साकिन कोइसा खुर्द को आज गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को सार्वजनिक रूप से दीप जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने के लिए पूरे बिहार में अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 25 वर्षों से राजनीति के क्षेत्र में लगातार देश की सेवा कर रहे हैं और इसी उपलब्धि को भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के साथ मिलकर अभियान के रूप में मनाने की योजना बनाई है। 17 सितंबर को पूरे देश भर में इस अभियान को चलाया जाएगा। आज इसको लेकर प्रभारी मंत्री ने कहा कि 17 सितंबर को जगह जगह सार्वजनिक रूप से दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा और दीप जलाकर प्रधानमंत्री मोदी को जनता के तरफ से आशीर्वाद दिया जाएगा। जनता से भी उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा कि सभी लोग 17 सितंबर को सार्वजनिक रूप से दीप जलाकर प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दें। उन्होंने देश को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत की है और लगातार देश को आगे बढ़ाने के लिए कई बेहतर निर्णय लिए हैं। इस वजह से आज देश काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जनता से उन्होंने अपील की कि सभी लोग 17 सितंबर को 7 बजे अपने घरों पर दीप जलाकर प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दें। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा,
1: सेवा के 25 वर्ष देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रव्यापी आशीर्वाद का दिया अभियान आयोजित किया जा रहा है। अभियान का संदेश है, जिसने जीवन संवारा उसे आशीर्वाद हमारा। जिन्होंने देश को संवारा, देश का सम्मान बढ़ाया, भारत के मान और मां भारती के संतानों का स्वाभिमान को जिसने बढ़ाया जगाया, एक राष्ट्र सबल राष्ट्र का भाव जिन लोगों ने हर भारतीयों के मन में प्रतिस्थापित किए, अनुच्छेद 370 धारा हटाने से लेकर राम मंदिर बनाने का, विरासत और विकास के भाव जगाने का, डिजिटल इंडिया का अभियान नौजवानों के मन के अंदर दुनिया को मुट्ठी में करने का एक माहौल जिसने बनाया, स्वच्छ भारत मिशन स्वस्थ भारत का वातावरण जिसने बनाया, जीएसटी लागू कर करके देश को आर्थिक रूप से मजबूती और सबलता प्रदान किए, जनधन योजना से करप्शन मुक्त भारत का संकल्प को साकार जिसने किया, आत्मनिर्भर भारत अभियान 21वीं सदी के भारत विकसित भारत का जिस सोच को जमीन पर उतारा, किसान सम्मान निधि से लेके महामारी तक में भी पूरे देश की एकजुटता का जिसने भाव जगाया, जिसने देश को संभारा, आज हर माँ भारती के संतानों का आशीर्वाद उनके साथ है। ये भाव का प्रकटीकरण हम लोगों का राष्ट्रीय अभियान में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोगों की भागीदारी, देश भर में बिहार के अंदर भी 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग की भागीदारी इसमें होगा। गांव-गांव और घर घर तक प्रधानमंत्री जी के जनता का आशीर्वाद और स्नेह पहुंचेगा। देश के प्रधानमंत्री जी जो काम किए घर घर तक, उस काम के निकट हमारा दीप प्रज्वलित कार्यकर्ता ही नहीं, जो देश को गौरवान्वित और विकसित भारत का योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, वो सब चाहे जन वितरण दुकान, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वयं सहायता समूह, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ सबके मन के अंदर एक नया उत्साह है। संगठन के जिला से लेकर के मंडल बूथ स्तर तक एनजीओ कोऑपरेटिव संस्था के साथ मिलकर अभियान को जन जन तक पहुंचाने का है। आज हमारा दीप प्रधानमंत्री आवास योजना की कॉलोनियों में जलेगा सामूहिक रूप से, अमृत सरोवर पर, नवनिर्मित सेतु बांध इंफ्रास्ट्रक्चर, जन औषधि केंद्र पर, आज आयुष्मान अस्पताल, शैक्षणिक संस्था, मंदिर से घाट, पंचायत भवन जो प्रमुख स्थान है उन पर दीप प्रज्वलित होगा। 17 सितंबर को 7 बजे शाम को पूरे बिहार में एक साथ दीप प्रज्वलित होगा। घर घर व्यक्तिगत दीप प्रज्वलन के साथ चयनित स्थानों पर सामूहिक दीप प्रज्वलित करने का, फोटो वीडियो सेल्फी सोशल मीडिया के माध्यम से लोग को जोड़ने का भी हमने आग्रह आह्वान किया। अभियान के डिजिटल प्रचार में सब लोगों से आशीर्वाद का दिया।
0: मीरगंज लाइन बाजार मुख्य पथ पर साहिबा चक गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित बस ने एक छात्रा को कुचल दिया, जिससे छात्रा की मौके पर मौत हो गई। मृत छात्रा मुस्कान कुमारी बताई जा रही है। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई, बहुत सारे लोग घटना स्थल पर जुट गए। कई घंटों तक आवागमन भी बाधित रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद छात्रा के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 20 सूत्री की बैठक में भोरे तथा थावे को नगर पंचायत बनाने पर बनी सहमति। अस्पताल में गंदगी पर जिलाधिकारी सख्त, परिसर की कराई गई सफाई। सारण नहर पर बनी सड़क का होगा मरम्मत। बंजारी में दिन दहाड़े एक व्यक्ति को मारी गोली, स्थिति गंभीर। हथुआ के गोपाल मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का धूमधाम से मनाया गया छठियार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
8: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
10: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
10: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: नमस्कार श्रोताओ, कहते हैं जहां समझ हो वहां तरक्की, और जब सेहत की समझ जुड़ जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। तो शुरू करते हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई, और मैं हूं आपकी आरजे दिव्या, जो हर सप्ताह सामुदायिक रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर लेकर आती हूं आपकी सेहत और बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक खास जानकारी। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM की, और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे अपने सेहतिया भैया और टिकन भाभी।
13: नमस्कार आरजे साहब, नमस्कार श्रोतागण, आज डिजिटल जमाने की सेहत की बातें होंगी, बड़ा मजा आएगा।
12: सेहतिया जी, जब से आए हैं मोबाइल से नजर ही नहीं हट रहे, लगता है रील का चस्का लग गया है।
13: अरे नहीं नहीं, मैं कोई रील नहीं देख रहा, मैं तो आभा हेल्थ ID के बारे में जानकारी पढ़ रहा था।
12: अरे ABHA के बारे में मैंने भी कुछ कुछ सुना है, तो श्रोताओं को बताएं ये ABHA हेल्थ ID आखिर होती क्या है।
13: ABHA आभा का मतलब है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता। यह एक यूनिक डिजिटल हेल्थ ID है जिसमें आपका मेडिकल रिकॉर्ड ऑनलाइन सेव रहता है। इससे डॉक्टरों को इलाज में आसानी होती है और मरीजों को फाइल की झंझट नहीं रहती।
14: यानी इलाज के वक्त बस आभा नंबर बताओ और डॉक्टर को सब कुछ दिखे, कोई एक्सरे, कोई रिपोर्ट, सब डिजिटल।
12: तो आयुष्मान कार्ड भी तो एक सुविधा सरकार ने चलाई है, तो हमें समझाइए आयुष्मान कार्ड और ABHA कार्ड में क्या फर्क है।
13: बहुत जरूरी सवाल है। आयुष्मान कार्ड यानी PMJ कार्ड एक बीमा योजना है जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज पाता है। आभा कार्ड सिर्फ आपकी स्वास्थ्य जानकारी का डिजिटल रिकॉर्ड है।
14: और आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत यही आयुष्मान कार्ड के जरिए 70 वर्ष से ऊपर के किसी भी आय या वर्ग के सभी, आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्ग, चाहे वो किसी भी आय वर्ग से हों, आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। दूसरी ओर आभा ID कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। सबसे खास बात यह है कि यदि किसी परिवार में कोई एक सदस्य या बुजुर्ग दंपत्ति 70 साल से ऊपर है तो वे अपना अलग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इससे उन्हें अपने परिवार के अन्य सदस्यों से अलग 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा।
12: अरे वाह, यानी कि जो बुजुर्गों के साथ बीमारी का आवाजाही लगी रहती थी उससे बाकी परिवार का बीमा कम नहीं होगा। दोनों आयुष्मान कार्ड और आभा ID की जरूरत अलग अलग है, लेकिन साथ में होने पर इलाज बहुत आसान हो जाता है। पर इन सब का क्या फायदा जब सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर इतना समय लग जाता है डॉक्टर को दिखाने में, उस पर तो सरकार कुछ किया ही नहीं।
13: अरे नहीं नहीं, किया है ना। जब आप अब जब भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएंगे तो स्कैन एंड शेयर का QR कोड लगा होता है जिससे कि लाइन में लगकर पर्ची बनवाने का झंझट खत्म, बल्कि अब बस स्कैन करो और अपना टोकन नंबर लो, जिससे 1 घंटे तक का समय बच जाता है। आभा और स्किन एंड सेयर से अब न फाइल न पर्ची।
14: वाह, तो अब तो इलाज भी हाईटेक हो गया।
3: एक सवाल और, इतनी सारी जानकारी ऑनलाइन रहेगी तो इसका दुरुपयोग तो नहीं होगा?
13: बिल्कुल सही चिंता है, लेकिन ABDM में डेटा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। 2023 का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP कानून लागू है। आपकी मर्जी के बिना कोई जानकारी नहीं देख सकता, और साथ ही आपके पास विकल्प होगा कि जो भी जानकारी आप अपने डॉक्टर के साथ दिखाना चाहते हैं वो विकल्प चुनें, बाकी आपके अलावा कोई नहीं देख सकेगा।
3: भैया ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, मतलब आसानी की आसानी और प्राइवेसी साथ। कोई अगर आभा ID बनवाना चाहे तो कैसे बनवाए?
13: बहुत आसान है, abdm.gov.in वेबसाइट या आभा ऐप से आधार या मोबाइल नंबर के जरिए खुद भी बना सकते हैं। भाई कोविड के वैक्सीन लगवाए थे, आधार से लगवाए थे?
3: हाँ लगवाए थे, और आधार कार्ड देकर ही लगवाए थे।
13: तो तुम्हारा आभा नंबर बना हुआ है, चेक करो, बहुत आसान है चेक करना। बस अपने फोन में आभा ऐप डाउनलोड करिए और आधार कार्ड जिस फोन नंबर से रजिस्टर किया है उससे लॉगिन करने का प्रयास करो। यदि आभा ID बनी होगी तो OTP आएगा, नहीं तो आभा ID रजिस्टर करने को बोलेगा।
14: और अगर मोबाइल या इंटरनेट नहीं है तो आशा दीदी या नजदीकी अस्पताल मदद कर देंगे।
3: स्वागत है आपका दोबारा। एक और जरूरी सवाल, तो क्या ये सारी सुविधाएं सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों तक सीमित है या आभा सेवाएं निजी अस्पतालों में भी मिलती हैं?
13: बिल्कुल मिलती है, अब कई प्राइवेट अस्पताल ABDM से जुड़ गए हैं। इससे रिकॉर्ड साझा करना, इलाज करवाना, यहाँ तक कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और दवाई मंगवाना भी आसान हो गया है।
3: तो अगर किसी को ये जानना हो कि कहाँ कहाँ पर ये सुविधाएं हैं या कौन कौन से डॉक्टर ये सुविधाएं दे रहे हैं तो वो कहाँ मिलेगी?
13: तो इसका सीधा उपाय है ना, NHA के वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पर बहुत से विकल्प होते हैं इन जानकारियों के साथ, कहाँ पर किस ब्लॉक में किस गांव में किस स्वास्थ्य केंद्र पर कौन सी सुविधा उपलब्ध है। साथ ही देश के बहुत बड़े निजी अस्पताल भी ABDM से अब संबंधित हैं, जिसकी जानकारी भी वहीं पर मिल जाएगी।
3: पर दिक्कत तो इसकी आती है कि सारी सुविधाएं या सरकारी डॉक्टर निपुण होते हैं, या क्या पता कौन से डॉक्टर अपनी दुकान चमकाने के लिए बोल दे कि वो ABDM की सुविधाएं दे रहा है।
14: अरे अरे अरे, कैसी बात कर रहे हो, हमारी सरकार भी आधा अधूरा काम नहीं करती। NHA की वेबसाइट पर जो भी डॉक्टर और स्वास्थ्य केंद्र सूची में है वह सब भारत और राज्य सरकारों में मेडिकल बोर्ड द्वारा अधिकृत है, और यह योजनाएं पूरे देश में मान्य है।
3: क्या मतलब पूरे देश में मान्य है? वैसे पूरे देश के नाम पर एक सवाल ध्यान में आया कि यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर कमजोर है और वो अपने निवासी राज्य या शहर से बाहर है तो क्या वो इन सब का फायदा उठा सकता है?
14: अब आए ना तुम सही मुद्दे पर, यही तो समझना चाह रहे थे हम दोनों इतनी देर से कि यदि किसी का आभा ID बना हो और वो उसे इस्तेमाल कर रहा हो तो वो देश के किसी भी राज्य के किसी भी शहर में हो तो वह इस पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड यानी आभा ID में मौजूद जानकारी कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता है। अपना कागजी जत्था लेकर चलने की जरूरत नहीं,
13: और आसानी की बात, क्योंकि इस पर सभी रिकॉर्ड सरकारी अधिकृत स्वास्थ्य केंद्रों और लैब द्वारा रिकॉर्ड होगा तो हर जगह मान्य होगा। इसलिए बार बार अलग अलग डॉक्टरों के लिए जांच का खर्चा भी बचेगा। तो इस तरह आभा कार्ड खास है, अगर आपने आभा कार्ड में पुराने रिपोर्ट सेव कर रखी हैं तो दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: तो क्या इसका मतलब है कि कोई भी कहीं भी कुछ भी सेवा ले सकता है? पर क्या ये सुविधा सिर्फ आभा कार्ड के साथ है, या आयुष्मान कार्ड भी कुछ इस तरह की सुविधाएं देता है?
13: तो और नहीं तो क्या है, तुम्हें याद नहीं किस तरह बिरजू गया था गुजरात कमाने और उसको डॉक्टर ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन बता दिया था अचानक दर्द होने पर? तब यही आयुष्मान कार्ड और आभा ही तो काम आए थे। अब दूसरे राज्य में गरीब इंसान कहाँ से पैसे जमा करता और कहाँ से अपनी मेडिकल हिस्ट्री लेता? जब ही तो उसका आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड काम आया और उसका सफलतापूर्वक इलाज हो सका बिना किसी खर्च के।
3: अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल गई थी ये बात कि जिस तरह आभा कार्ड हर जगह आपका हेल्थ रिकॉर्ड मान्य तौर पर दिखता है, उसी तरह आयुष्मान कार्ड देश के किसी भी राज्य के किसी भी शहर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अधिकृत स्वास्थ्य में मान्य है और वो सुविधा ले सकते हैं।
14: पर ध्यान रहे, परिवार में जिस जिस का नाम राशन कार्ड पर है उन सब का अपना अलग अलग उनके नाम से आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। जिनका नहीं होगा वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा नहीं उठा पाएंगे।
3: तो इसका मतलब है कि ABDM हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर कर सकता है।
13: जी जी बिल्कुल, आभा ID जो कि एक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत स्वास्थ्य पहचान होगा जो कि अपने सारे हेल्थ रिकॉर्ड को सुरक्षित रखता है, साथ ही मेडिकल रिकॉर्ड को डॉक्टर के साथ आसानी से साझा करने में मदद करता है। इससे मरीजों को अस्पताल में बार बार कागजी दस्तावेज लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
14: दूसरा, कैन एंड शेयर सुविधा आपको अस्पताल की लंबी कतारों और पर्चियों से बचाकर समय की बचत करती है। वहीं UHI प्लेटफॉर्म से आप घर बैठे डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं और दवाएं मंगवा सकते हैं। हेल्थ प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री से देश भर के योग्य डॉक्टरों की जानकारी मिलती है और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री से आपके नजदीकी क्लिनिक, लैब और अस्पताल की पूरी सूची एक क्लिक में उपलब्ध हो जाती है।
12: अरे वाह वाह, पर एक बात और तो बताइए, अगर किसी का आभा नंबर खो जाए तो?
14: तो घबराइए नहीं, वेबसाइट पर आभा नंबर पुनर्प्राप्त करें पर जाएं, मोबाइल नंबर डालिए, OTP डालिए और नंबर दोबारा मिल जाएगा।
12: और जानकारी अपडेट करनी हो तो
13: वेबसाइट या ऐप से लॉगिन करके प्रोफाइल एडिट कीजिए, नाम, मोबाइल, पता सब बदल सकते हैं और अस्पताल में जाकर अपडेट भी कराया जा सकता है।
12: देश भर में ABDM की स्थिति कैसी है?
13: सरकार इस मिशन को तेजी से फैला रही है, सरकारी और निजी दोनों अस्पताल इससे जुड़ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बन रहा है।
14: डॉक्टर, मरीज, फार्मेसी, लैब सब एक छतरी के नीचे आ रहे हैं, इससे इलाज पारदर्शी, सुलभ और तेज होगा।
12: और डिजिटल अपनाने की संभावनाएं?
13: भारत में डिजिटल एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है, इंटरनेट, स्मार्टफोन से अब लोग डिजिटल सेवाएं अपनाने लगे हैं। ABDM यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर बड़ा कदम है।
12: सेहतिया भैया टिकन भाभी, आखिरी में ये बताइए, आम आदमी को ABDM से क्या उम्मीद रखनी चाहिए?
13: उम्मीद रखिए कि अब इलाज में भाग दौड़ कम होगी, रिकॉर्ड सुरक्षित होंगे और सिस्टम भरोसेमंद होगा।
14: और ये भी उम्मीद रखिए कि अब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, सलाह, रिपोर्ट सब कुछ फोन पर ही होगा।
12: तो श्रोताओं, आज की बातचीत से ये समझ में आया कि ABDM सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि हमारी सेहत को सुरक्षित और सरल बनाने का डिजिटल समाधान है। अगर आपने अभी तक आभा ID नहीं बनाई है तो आज ही बनवाएं। याद रखिए, सेहत सही तो लाभ कई। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और डिजिटल बनिए। नमस्कार।
15: हम सब मिलकर आज शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
16: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
17: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
18: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
19: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
20: संतुलित आहार और व्यायाम को अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
21: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
22: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
23: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
24: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
23: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
24: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
23: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
24: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
23: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
25: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
26: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
27: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी
0: सरकार की प्राथमिकता है।
26: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
25: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
23: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
25: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
23: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
25: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
23: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
25: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
23: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 90765650।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रूपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
0: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99,554-97,644।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अनुमति लेने का। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा।
1: लिसनर्स, होप यू एंजॉय टुडेज आज सवेरे। स्टे ट्यून्ड फॉर समाचार प्रभात फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ फैंटास्टिक डे। नमस्कार।

0: 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का से ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल या हुनर वाले पेशेवरों को एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर देना और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत रूस के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को सुलझाने का सही तरीका है और भारत शांति के प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते नराइशिमे अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सिहासिक फुआंग केटकेओ भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम फेटिमा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
4: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ।

0: हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेयरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
0: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ब्रिक्स में भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
1: भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2: ब्रिक्स वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओनली ट्रेड।
3: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियां। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इन देशों के बीच न सिर्फ व्यापार और सहयोग बढ़ना चाहिए, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, यह दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला मंच बन सकता है।
2: वसुदेव कुटुंबकम।
1: सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो कल सवेरे 6 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
0: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुंच बढ़ाने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांगी रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में लगभग 1100 डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद किया गया है। यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में एक है। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। चीन के मुक्की में यह मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 से हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस फोरम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने सम्मेलन शीर्षक से लिखा है ब्रिक्स व्यापारिक बाधाएं हटाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है ब्रिक्स से बना ब्रिज, पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार। जनसत्ता के अनुसार समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दैनिक जागरण लिखता है ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी पुतिन फिजिशियन। अमर उजाला की सुर्खी है जीडीपी आंकड़ों पर आईएमएफ की मुहर, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। कहा आईआईपी और पीपीआई की नई श्रृंखला से बेहतर होगी आंकड़ों की गुणवत्ता। पत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में 45 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बढ़त। ई कॉमर्स शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है ऑनलाइन खरीदारी में फर्जी डिस्काउंट पर लगाम, एमआरपी बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट का खेल नहीं चलेगा, पिछले 30 की सबसे कम कीमत बतानी होगी। पंजाब केसरी की सुर्खी है मलेशिया को हरा भारतीय हॉकी टीम फाइनल में, जूनियर एशिया कप में लगातार 4थे और कुल 6ठे खिताब पर नजरें। लोकसत्ता के अनुसार महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 से हराया। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है भारतवंशी वसुधा ने अमरीकी गणितज्ञ जोआन को 92 की उम्र में दोबारा गणित से जोड़ा। मैथ से दूरी बना चुकी थी जोआन, लेकिन छात्रा वसुधा की जिद ने भर दी ऊर्जा। गुरु शिष्या के जुगलबंदी ने सुलझाई 100 पुरानी गणित की थ्योरी। जनसत्ता ने दिया है भारत नवोन्मेष प्रदर्शनी में 37 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रदर्शित। शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से किया आयोजन, नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है उद्देश्य। हिंदुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है पश्चिमी विक्षोभ तय करेगा सर्दियों में प्रदूषण। पत्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का सीधा संबंध शरद ऋतु के दौरान समुद्र के तापमान से होता है। इसके आधार पर प्रदूषण की गंभीरता का अनुमान एक मौसम पहले ही लगाया जा सकता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ। आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 पे।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87894 18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 अमरजैट पर।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
9: Thank you.

0: तब भौजी आज सुबह से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है शुरू। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 18,77,000 नए मकानों को मंजूरी मिली। बिहार समेत 6 राज्यों को होगा लाभ। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। ट्रैफिक चालान समेत विभिन्न मामलों का होगा निपटारा। और गंगा, पुनपुन और सोन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट के बावजूद अब भी खतरे के निशान से ऊपर। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देश के लिए एक वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई बैठकें करेंगे। इनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असिसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान शामिल होंगे। श्री मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ भी बैठक में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का देश से ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस उच्च स्तरीय सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ब्रिक्स बैठक का थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU के द्वितीय चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। इससे शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह निर्णय नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने की। बैठक में PMAYU द्वितीय चरण के लाभार्थी आधारित निर्माण और साझेदारी में किफायती आवास श्रेणियों के अंतर्गत लगभग 29,000 अतिरिक्त मकानों को भी मंजूरी दी गई है। यह अनुमति बिहार, असम, गुजरात, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के लिए है। श्री सिंह ने राज्यों से PMAYU के द्वितीय चरण के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन तथा निगरानी के लिए मिलकर प्रयास करने को कहा ताकि योजना का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सके। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। इसके तहत प्रत्येक भूखंड को 14 अंकों का यूनिवर्सल लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी ULPIN दिया जाएगा। इसे भू आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे जमीन का नक्शा, अधिकार रिकॉर्ड और पंजीकरण संबंधी जानकारी एक साथ उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत इस व्यवस्था के लिए 565 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया है। श्री चौहान ने कहा कि भू आधार जमीन के मालिकाना हक का प्रमाण नहीं होगा। स्वामित्व का निर्धारण संबंधित राज्य के वैध भूमि रिकॉर्ड और कानून के आधार पर ही होगा। राज्य में खरीफ 2024 के लिए 117,708 किसानों के खाते में फसल क्षति सहायता के रूप में 104,46,46,405 रुपए DBT के माध्यम से भेजे गए हैं। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि यह भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया गया। श्री यादव ने बताया कि रबी 2024-25 के लिए पात्र किसानों के आंकड़ों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के बाद सहायता राशि जल्द भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा और अन्य कारणों से फसल की उपज में कमी आने पर किसानों को यह सहायता दी जाती है। वर्ष 2026-27 के रबी मौसम से राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लागू होगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुँच बढ़ाने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: राजस्व और भूमि सुधार विभाग जमाबंदियों में सुधार के लिए 45 दिन का विशेष अभियान चलाएगा। अभियान के दौरान खाता, खेसरा, प्लॉट और रैयत के नाम में दर्ज त्रुटियों को दूर किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर निशुल्क भूमि मापी भी कराई जाएगी। विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि अधिकारियों और लोगों के बीच संवाद की कमी के कारण ऑफलाइन आवेदनों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अंचलों के कामकाज की गुणवत्ता पर मुख्यालय से प्रतिदिन निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की जा रही है। सरकारी भूमि का लैंड बैंक तैयार करने के लिए जिलों की सभी प्रकार की सरकारी भूमि को इसमें शामिल किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति राज्य के 29 जिलों में वज्र गृह सह परीक्षा भवन का निर्माण कराएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद इसके लिए 33 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहले चरण में 12 स्थानों पर वज्र गृह और परीक्षा भवन के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इनमें रोहतास, लखीसराय, बेगूसराय, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, वैशाली, कैमूर, नालंदा, जमुई, कटिहार, नवादा और मधेपुरा शामिल हैं। इन भवनों के निर्माण से प्रश्न पत्रों और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित भंडारण के साथ परीक्षा संचालन व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत के लिए सभी जिला और अनुमंडल न्यायालयों में विशेष पीठों का गठन किया गया है। लोक अदालतों में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ प्रकार के फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाएगा। ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का भी निष्पादन लोक अदालतों के माध्यम से किया जाएगा। परिवहन मंत्री दामोदर राउत ने वाहन मालिकों से लंबित चालानों के निष्पादन के लिए लोक अदालत आने की अपील की है।
1: प्यारे बिहार वासियों, 12/9/26 को राष्ट्रीय लोक अदालत सभी जिलों में लगाया जा रहा है। परिवहन विभाग के 90 दिन से पूर्व के चालान हैं, उनकी सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में होगी। उन चालानों पर फैसला आएगा। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस योजना का आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ लें और अपने ई चालान से मुक्ति पाने का काम करें।
0: प्रदेश में गंगा, पुनपुन और सोन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है, लेकिन गंगा और पुनपुन नदी कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर दरधा नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 1.23 मीटर ऊपर दर्ज किया गया। मनेर में 9 सेंटीमीटर की कमी के बावजूद नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 81 सेंटीमीटर अधिक है। दीघा घाट पर 6 सेंटीमीटर की कमी के साथ गंगा खतरे के निशान से 63 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर पिछले 24 घंटे में 39 सेंटीमीटर कम हुआ, लेकिन अब भी ये खतरे के निशान से 1.41 मीटर ऊपर बह रही है। गंगा, गंडक, कोसी और सोन नदी में जलस्तर घटने के साथ ही तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा भी बढ़ गया है। पानी कम होने के बाद नदियों की धारा कई स्थानों पर दबाव बना रही है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। स्थानीय अभियंता के अतिरिक्त विभाग के नियंत्रण कक्ष से भी निगरानी रखी जा रही है। इधर नेपाल की ओर से आने वाली पानी में उतार चढ़ाव के कारण कई नदियों की धारा में बदलाव होने की संभावना है। बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय जनता दल ने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी 2 दिवसीय अररिया दौरे के दूसरे दिन आज फारबिसगंज में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू होने वाले पार्टी के सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का

18वां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है शुरू। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 18,77,000 नए मकानों को मंजूरी मिली। बिहार समेत 6 राज्यों को होगा लाभ। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। ट्रैफिक चालान समेत विभिन्न मामलों का होगा निपटारा। और गंगा, पुनपुन और सोन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट के बावजूद अब भी खतरे के निशान से ऊपर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6502-62112 पे।
9: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029-94-91 8029-94-91 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना लें और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।

0: रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नाम बता दीजिए। शिवम
1: जी,
0: आपकी आवाज कट रही है, आप नेटवर्क वाले एरिया में जाए।
1: नेटवर्क वाला एरिया नहीं है
0: जी।
1: शिवम है
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं शिवम जी?
1: पटना से।
0: तकिया? तकिया से?
1: तकिया नहीं, पटना।
0: पटना से?
1: पटना,
0: वही ना पटना। तो क्या करते हैं शिवम जी?
1: तैयारी करते हैं
0: बीपीएससी का। चलिए अच्छी बात है। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है?
1: ग्रेजुएशन कम्प्लीट है।
0: ओके, चलिए अच्छी बात है, ग्रेजुएशन कम्प्लीट है। तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए? लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न। ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए शिवम जी।
1: माँ का नाम है मनोरमा देवी और पापा का नाम है।
0: ओके, तो लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न। ओके, तो आपसे आपका पहला प्रश्न ये है शिवम जी,

0: विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 जुलाई, बी है 12 अक्टूबर और सी है 10 दिसंबर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जुलाई वाला को करते हैं।
0: जुलाई वाला
1: को करिए।
0: जुलाई वाला करेगा रे जुलाई।
1: हाँ।
0: कंफर्म है?
1: नहीं
0: तो लॉक कर
1: दो। तो बता दिया। हाँ बस यही हमारे पास नहीं है।
0: तो चलिए शिवम जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 11 जुलाई को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए? ओके। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किससे बनती है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किससे बनती है? ऑप्शन ए है समुद्री पौधे, बी है अमेजन जंगल और सी है हिमालय जंगल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: होगा
0: समुद्री पौधे। कन्फर्म है?
1: 90% यही बनाता है।
0: ओके तो लॉक करूं?
1: बिल्कुल।
0: ओके तो चलिए शिवम जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए समुद्री पौधे को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए? ओके। आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारत में पहली बार डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ था? भारत में पहली बार डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ था? ऑप्शन ए 1850, बी 1852 और सी 1855। आपका समय शुरू होता है अब।
1: 1850।
0: ऑप्शन ए था 1850, बी था 1852 और सी है 1855। हाँ
1: बावन को लगाइए।
0: ओके तो शिवम जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1852 को लॉक करते हैं। और बता दे आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो लिया जाए चौथा प्रश्न आपसे।
1: क्वेश्चन डाक टिकट कब जारी हुआ था?
0: हाँ, डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ था?
1: 52 में हुआ था
0: जी, सिंध डाक टिकट।
1: ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
0: तो आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, किस भारतीय राजा ने सड़क एजाम का निर्माण किया था? किस भारतीय राजा ने सड़क एजाम का निर्माण किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी शेरशाह सूरी और सी हर्षवर्धन। आपका समय शुरू होता है अब। कन्फर्म है इसमें?
1: नामी से पता चल रहा है, उस समय आजम वाजम कहाँ होता है।
0: जी जी, तो लॉक करूँ?
1: हाँ बिल्कुल।
0: ओके तो चलिए शिवम जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी शेरशाह सूरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप पांचवे प्रश्न के लिए? ओके। आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, दुनिया का सबसे छोटा पंछी कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा पंछी कौन सा है? ऑप्शन ए गौरैया, बी हमिंगबर्ड और सी सनबर्ड। आपका समय शुरू होता है अब। कन्फर्म है?
1: बिल्कुल।
0: लॉक करूँ? ओके तो चलिए शिवम जी, आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हमिंग बर्ड को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए? ओके। आज से आपका छठा प्रश्न ये है, भारत का पहला ध्वनि रोधी स्टूडियो किस शहर में स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मतलब
0: साउंड प्रूफ
1: है नहीं, मुंबई
0: को
1: मुंबई
0: ऑप्शन ए।
1: हाँ
0: कंफर्म है?
1: नहीं क्वेश्चन ही नहीं पता, कंफर्म करना है। कलकत्ता भी लग रहा है, मुंबई भी लग रहा है,
0: तो क्या लॉक करूं?
1: जी आपका समझ में आना
0: चाहिए, आप बोलिए मुंबई को करूं। ओके तो चलिए शिवम जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मुंबई को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर गलत है, सही उत्तर कोलकाता होगा ना कि मुंबई। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगले संडे फिर ट्राई करिएगा। हेलो जी, रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ नाम बता दीजिए।
2: मेरा नाम औरंगजेब है
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं औरंगजेब जी?
2: पाखो कॉलेज से
0: जी। क्या करते हैं आप?
2: हम पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: हाई।
0: ओके लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न। ओके आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: पापा का नाम शेख अनवर आलम और
0: मम्मी का नाम एक बार और बता दीजिए।
2: सुजाता खातून
0: जी। आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
2: यस किए थे।
0: ओके तो तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: यस मैम।
0: ओके तो चलिए आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: गोपालगंज का पुराना नाम क्या है? गोपालगंज का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए मुबारकपुर, बी गोपालपुर और सी गोपाल कृष्णगंज। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम सी क्लॉक के लिए।
0: गोपाल कृष्णगंज को?
1: यस मैम कर दीजिए।
0: कंफर्म है?
1: नहीं मैम।
0: तो लॉक करूं?
1: यस मैम।
0: ओके तो चलिए औरंगजेब जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा मुबारकपुर, ना कि गोपाल कृष्णगंज। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
9: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
10: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुँचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
9: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
11: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
12: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
11: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
12: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
11: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
12: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
11: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-91 8029-94-91 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
13: हेलो,
14: क्या मैम आप हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट से बोल रहे हैं?
13: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
14: यस मैम, आज क्यूज होगा?
13: जी हो रही है क्यूज। आप नाम बता दीजिए अपना।
14: सुमित कुमार।
13: सुमित कुमार कहाँ से बात कर रहे हैं सुमित जी?
14: सासामुसा।
13: जी क्यूज कॉन्टेस्ट में पहली बार कॉल किए हैं?
14: यस मैम।
13: ओके, क्या करते हैं आप सुमित जी?
14: अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
13: किस क्लास की?
14: अभी मैं टेंथ में अब हूँ।
13: अच्छा, इस साल टेंथ में गया है, मतलब आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट ईयर?
14: अगले साल।
13: जी जी, पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
14: बढ़िया चल रही है।
13: आगे क्या करना है, कुछ सोचा है आपने?
14: हाँ, आगे टेंथ की पढ़ाई करके उसके बाद क्रिकेट में ज्वाइन होऊंगा।
13: अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया बात है। अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
14: मम्मी का नाम श्रीमती मीरा देवी और पापा जी का नाम श्री संतोष स्वामी।
13: ओके, तो शुरू किया जाए पहला प्रश्न आपके साथ।
14: यस मैम।
13: ओके,

0: आपसे आपका पहला प्रश्न ये है, बिहार राज्य को कितने परमंडल में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9। आपका समय शुरू होता है अब।
1: नौ।
0: श्योर है?
1: यस मैम श्योर। नौ।
0: लॉक कर दो?
1: यस मैम लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सुमित जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 9 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी खजिरगा राष्ट्रीय उद्यान और सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन फिर से बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी खजिरगा राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान।
1: खजिरगा।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक करो?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सुमित जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी खजिरगा राष्ट्रीय उद्यान को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमिशन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी मैं सोनू दुबे बात कर रहा हूँ प्योर पार्टी से।
0: जी कैसे हैं सोनू जी?
2: बढ़िया है मैम, अपने बताइए।
0: हम भी बढ़िया है। पढ़ाई कहाँ तक हुई है सोनू जी आपकी?
2: ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर चल रहा है।
0: पढ़ाई ठीक चल रहा है ना?
2: जी
0: जी। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम कलिंदा देवी और पिताजी का नाम संतोष दुबे।
0: जी, तो लिया जाए पहला प्रश्न।
2: जी
0: ओके, तो सोनू जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति। आपका समय स्रोत है अब।
1: उपराष्ट्रपति को फिक्स कीजिए।
0: श्योर है? आपके बगल से आवाज आ रही है, शायद रेडियो चल रहा है।
1: हवाएं चल रही है अभी, ठीक जा रहा है?
0: हेलो, ठीक है। हवा का आवाज नहीं आ रहा है, कुछ और चीज का आवाज आ रहा है।
1: ठीक है,
0: ओके, तो लॉक कर दे उपराष्ट्रपति को।
1: जी जी
0: जी। तो सुनो जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन ए O2, बी O3, सी CO2। आपकी कॉल स्पीकर पे है।
1: जी।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
6: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710-3092 या 90765-65750।
0: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80-29-94-921 80-29-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
9: हेलो नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। नाम बता दीजिए आप अपना।
9: अंशु कुमार।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं अंशु जी?
9: हेलो,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं अंशु जी?
9: सहलादपुर।
0: अच्छा, सहलादपुर। क्या करते हैं आप?
9: पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
9: 9।
0: ओके, तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है अंशु जी?
9: आगे का लक्ष्य कॉम्पिटिशन की तैयारी करना।
0: चलिए अच्छी बात है। तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
9: यस।
0: लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न?
9: यस।
0: ओके, तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
9: पापा का नाम जितेंद्र यादव, मम्मी का नाम बासमती देवी।
0: ओके, तो अंशु जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई, बी 12 अक्टूबर, सी 10 दिसंबर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन थोड़ा फिर से रिपीट कीजिए।
0: ऑप्शन ए 11 जुलाई, बी 12 अक्टूबर, सी 10 दिसंबर।
1: 11 जून।
0: जून?
1: हेलो।
0: हाँ 11 जून।
1: 11 जुलाई होगा मैम।
0: ओके कंफर्म है?
1: यस।
0: लॉक करूँ?
1: यस।
0: ओके कहाँ है? थोड़ा साइड हो जाइए, आपके बैकग्राउंड में बहुत ही हल्का आवाज आ रहा है। लॉक करें ना आपके पहले प्रश्न का उत्तर?
1: यस मैम।
0: ओके तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर 11 जुलाई बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस।
0: ओके आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया, बी भारतीय रिजर्व बैंक और सी भारतीय स्टेट बैंक। आपका समय शुरू होता है अब।
1: भारतीय स्टेट बैंक।
0: कंफर्म है?
1: यस।
0: लॉक करूं?
1: यस।
0: ओके तो चलिए अंशु जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, ना कि भारतीय स्टेट बैंक। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: हेलो
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: रंजन बोल रहे हैं
0: जी, क्या करते हैं रंजन जी?
2: बीएड चल रहा है मैम।
0: तो क्या आगे का क्या लक्ष्य है आपका?
2: गवर्नमेंट पोलिटिकल।
0: ओके तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: हाँ।
0: ओके तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: हाँ।
0: ओके आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए रंजन जी।
2: मम्मी का नाम लाल पट्टी और पापा का नाम
0: इंद्रियाना। ओके तो चलिए रंजन जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है।

0: विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई, बी 12 अक्टूबर, सी 10 दिसंबर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ग्यारह जुलाई को मैम।
0: कंफर्म है?
1: हाँ।
0: लॉक कर दूँ?
1: हाँ कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए रंजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 11 जुलाई को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, अब से आपका दूसरा प्रश्न ये है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किससे बनती है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किससे बनती है? ऑप्शन ए समुद्री पौधे, बी अमेजन जंगल और सी हिमालय जंगल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: समुद्री पौधे।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म से नहीं लग रहा है।
0: ओके, तो लॉक कर दूं?
1: हाँ कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए रंजन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए समुद्री पौधे को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, कौन सा ग्रह सूर्य के विपरीत दिशा में घूमता है? कौन सा ग्रह सूर्य के विपरीत दिशा में घूमता है? ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी शुक्र और ऑप्शन सी अरुण। आपका समय शुरू होता है।
1: फिक्स कीजिएगा।
0: कंफर्म है?
1: हाँ कंफर्म है।
0: ओके, तो चलिए रंजन जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए? आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, दुनिया का सबसे छोटा पंछी कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा पंछी कौन सा है? ऑप्शन ए गौरैया, बी हमिंग बर्ड और सी सन बर्ड। आपका समय शुरू होता है।
1: हमिंग बर्ड को मैं फिक्स कीजिएगा।
0: कंफर्म है?
1: हाँ ये वाला कंफर्म।
0: ओके, तो चलिए रंजन जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हमिंग बर्ड को लॉक करते हैं। और बता दे आपको कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है पांचवे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, भारत की किस नदी को साल में केवल एक बार बहने वाली नदी कहा जाता है? भारत की किस नदी को साल में केवल एक बार बहने वाली नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए माही नदी, बी लूनी नदी, सी मौसम नदी। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए माही नदी, बी लूनी नदी, सी मौसम नदी।
1: मौसम को थोड़ा फिक्स कीजिए, कंफर्म इसमें तो नहीं लग रहा है।
0: मौसम को फिक्स करें?
1: हाँ इसी को फिक्स कीजिए।
0: ओके, तो चलिए रंजन जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी मौसम नदी को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा लूनी नदी, ना कि मौसम नदी। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999। तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80 029 94 921 80 029 94 921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
7: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
7: सुधा कुमारी पासवान।
0: सुधा कुमारी पासवान, कहाँ से बात कर रही हैं सुधा जी?
7: बतारदे से।
0: जी, क्या करती हैं आप?
7: पढ़ाई करते हैं मैम।
0: किस क्लास में पढ़ती हैं?
7: 10th।
0: ओके, तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की हैं, तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
7: जी मैम।
0: ओके, आपका आगे का लक्ष्य क्या है सुधा?
7: मैम अभी तो सोची नहीं हूँ।
0: मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
7: पिता जी का नाम है श्री सुमन मांझी, माता का नाम है श्रीमती जानमती देवी।
0: ओके, आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की हैं?
7: जी मैम।
0: ओके, लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
7: जी मैम, पूछिए।
0: ओके, आज से आपका पहला प्रश्न ये है

0: विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई, बी 12 अक्टूबर, सी 10 दिसंबर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन फिर से बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए 11 जुलाई, बी 12 अक्टूबर, सी 10 दिसंबर।
1: जी को लॉक कीजिए।
0: 12 अक्टूबर?
1: हाँ।
0: कंफर्म है?
1: नहीं मैम, कंफर्म तो नहीं।
0: ओके, चलिए सुधा जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 12 अक्टूबर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा 11 जुलाई, ना कि 12 अक्टूबर। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर ट्राई करिएगा।
1: ओके बाय मैम।
0: बाय।
2: हाँ हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: हाँ, एक बार आप 5 जवाब दिए थे, उसके बाद फिर 4 इतवार हो गया, 4 रविवार, कभी बीजिए रहता है, बीजिए रहता है। तो अब बताइए, आप हमसे प्रश्न पूछिए, ऐसा आदमी से प्रश्न पूछते हैं 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास में, हम जब जवाब देने लायक बैठे हुए हैं। हम
0: नाम बता दीजिए आप अपना।
2: रमन प्रसाद, रमन जी, रमन जी कहते हैं आप लोग।
0: रमन?
2: हाँ,
0: रमन जी प्रसाद हैं।
2: रमन, रमन
0: का नाम क्या है? हम लोग रमन बोलते हैं, तो आपका नाम क्या है?
2: हमारा नाम रमन प्रसाद।
0: रमन प्रसाद है?
2: हाँ, तो रमन, रमन जी, रमन जी आप लोग कहते हैं। हम अपना आधार कार्ड ले आ गए हैं, वोटर कार्ड ला गए हैं।
0: ओके ओके, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जी,
2: तो आप बताइए कि आप भगवान के नाम पर कोई कोई प्रश्न पूछिए, हम जवाब देंगे आपको।
0: ओके, तो आप कहाँ तक पढ़े हैं रमन जी?
2: हम इंटर पास हैं, बहुत पहले का।
0: अच्छा, अभी क्या करते हैं आप?
2: हम यही बैठे हुए हैं भोपाल में, हमारा लड़का काम करता है बैंक में, लड़की की काम करती है।
0: ओके, तो आप लोग क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: हाँ, पहला प्रश्न के लिए तैयार हैं।
0: जी, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता देते हैं।
2: जय बहादुर, पापा का नाम है, पिताजी का, और किशोरी देवी माता का नाम है।
0: ओके, तो चलिए रमन जी, आपसे आपका पहला प्रश्न लिया जाए।
2: हाँ, लिया जाए।
0: ओके, आपका पहला प्रश्न ये है

0: गोपालगंज का पुराना नाम क्या है? गोपालगंज का हरखुआ। कंफर्म है आप?
1: हाँ कंफर्म है, हम बिना एसी का ऑप्शन का ही बताएंगे आपको।
0: हरखुआ
1: गांव में है, गोपालगंज स्टेशन है ना, हरखुआ गांव में है। वहाँ हमारा रिश्तेदारी है।
0: सवाल क्या किए हैं आप, सुने हैं सवाल?
1: नहीं बताइए।
0: सवाल मेरा ये था, गोपालगंज का पुराना नाम क्या है?
1: जो पुराना नाम,
0: हाँ पुराना नाम क्या है? तो ऑप्शन दे या फिर आपको याद है जवाब?
1: हाँ तो ऑप्शन दीजिए। तो
0: ऑप्शन ए है मुबारकपुर, बी है गोपालपुर और सी है गोपाल कृष्णगंज। आपका समय शुरू होता है अब।
1: गोपाल कृष्णगंज है, गोपाल कृष्णगंज की है।
0: सी ऑप्शन सी।
1: मुबारकपुर चाहिए आप, बंसी जी
0: मुबारकपुर को लॉक करो। कन्फर्म है?
1: अब क्या कर, हम कभी सुने नहीं है, हम हरखुआ जानते थे।
0: ओके तो मैं लॉक करूँ मुबारकपुर?
1: हाँ लॉक कीजिए।
0: ओके तो चलिए रमन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मुबारकपुर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप? हाँ। दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके तो आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है,
1: पहला दिन है थोड़ा हिसाबे में सही है, चार पाँच को सही हो जाएगा तो हम सुधार अगला रविवार से।
0: बिहार का सबसे आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, लिया जाए दूसरा प्रश्न?
1: हाँ जी।
0: ओके तो आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, बिहार का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? ऑप्शन ए है होली, बी है दीपावली, सी है छठ पूजा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: छठ पूजा।
0: कन्फर्म है?
1: हाँ जी।
0: लॉक कर दूँ?
1: लॉक कर दी।
0: ओके तो चलिए रमन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ तीसरे प्रश्न के लिए।
0: ओके तो आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, अशोक किस वंश का शासक था?
1: सम्राट वंश का। मौर्य वंश का।
0: मौर्य वंश। कन्फर्म है?
1: कन्फर्म है।
0: ओके जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो लिया जाए आपसे आपका चौथा प्रश्न।
1: हाँ जी।
0: ओके तो आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता।
1: मोहन जोदड़ो का मतलब समझते हैं, किताब में लिखा हुआ है
0: जी, बता दीजिए।
1: मुर्दा हलाया जाता है वहाँ, एक एक फीट पर मुर्दा हलाया हुआ है मरे हुए आदमी को, उसी की जोदड़ो कहते हैं मोहन जोदड़ो।
0: ओके तो लॉक करें आपके चौथे प्रश्न का उत्तर। ओके तो चलिए रमन जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर मोहन जोदड़ो को लॉक करते हैं।
1: हाँ लॉक कीजिए।
0: ओके तो आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: हाँ जी।
0: ओके
1: इसी तरह उस दिन भी पांच हो गया था।
0: ओके
1: आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे ना।
0: जी जी आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है?
1: 20 दिसंबर को।
0: लॉक करूँ?
1: लॉक कीजिए।
0: ओके तो चलिए रमन जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर 10 दिसंबर को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर गलत है, सही उत्तर होगा 11 जुलाई ना कि 10 दिसंबर। ओके हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद, अगले संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: ठक ठक
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-921, 8029-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
12: जी धन्यवाद।
0: नाम बता दीजिए।
12: नाम मेरा हो गया गौरव
0: जी। एक बार और बताएं नाम।
12: गौरव कुमार
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं गौरव जी?
12: जी मैं पटना से बात कर रहा हूँ
0: जी। क्या करते हैं?
12: अभी तो खैर जॉब की तैयारी करते हैं।
0: तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
12: ग्रेजुएशन हो गई है।
0: कौन से जॉब का तैयारी कर रहे हैं?
12: SSC रेलवे।
0: चलिए अच्छी बात है। तो आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में जुड़े हैं?
12: नहीं ये फर्स्ट टाइम है।
0: तो कहाँ से पता चला आपको हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के बारे में?
12: ऐप से। ऐप में मैंने ऐप इंस्टॉल किया, उस पर मैं सुनता था तो मुझे पता चला इसके बारे में। एक बार ये कार्यक्रम आया तो मैं सुना था। उसके बाद नंबर यहाँ पे बताया गया था कि संडे को 12 बजे कॉल करना होता है, तो मैंने कॉल किया 12 बजे। ट्राई करते करते अभी लगा।
0: बंद रहता है ना नंबर?
12: ट्राई लेकिन बहुत करना पड़ता है, अभी करीब 15 मिनट से ट्राई कर रहे थे तो लगा। बोला जाता है कि 12 बजे से कॉल लगना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 12 बजे से तो नंबर हमेशा स्विच ऑफ ही आता है, 12:10 से कॉल लगना स्टार्ट होता है।
0: तो लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
12: ओके
0: चलिए आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 जुलाई, बी है 12 अक्टूबर और सी है 10 दिसंबर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ग्यारह जुलाई
0: कंफर्म है?
1: हाँ, 11 जुलाई कंफर्म।
0: ओके, तो लॉक कर दूँ?
1: कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 11 जुलाई बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया। आपका समय शुरू होता है अब।
1: रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक।
0: कन्फर्म है?
1: हाँ।
0: लॉक करूँ?
1: लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए गौरव जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी जी।
0: ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, दुनिया का सबसे छोटा पंछी कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा पंछी कौन सा है? ऑप्शन ए गौरैया, बी हमिंग बर्ड और सी सनबर्ड। आपका समय शुरू होता है अब।
1: एक और ऑप्शन फिर से बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए गौरैया, बी हमिंग बर्ड, सी सनबर्ड।
1: हमिंग बर्ड
0: कन्फर्म है?
1: हाँ।
0: तो लॉक कर दूँ?
1: हाँ।
0: तो चलिए गौरव जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी जी।
0: ओके, आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, भारत में पहली बार डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ था? भारत में पहली बार डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ था? ऑप्शन ए 1850, बी 1852 और सी 1855। आपका समय शुरू होता है अब।
1: अठारह सौ पचपन।
0: ऑप्शन सी
1: जी।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म तो नहीं लगा है, लेकिन एक बार लगा दीजिए।
0: लॉक कर दो?
1: हाँ, कर दीजिए। कम ही लग रहा है इसका सही होने का।
0: ओके, तो चलिए गौरव जी आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 1855 को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा 1852 सिंध डाक टिकट।
1: मुझे मालूम था ये गलत होने वाला, 1852 लग रहा था।
0: चलिए लोकेश कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, रेडियो रंजन का कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बता दीजिए।
2: इमरान अंसारी।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं इमरान जी?
2: बहरोपट्टी
0: जी। क्या करते हैं आप?
2: पढ़ाई करते हैं।
0: कहाँ जा रहे हैं आप?
2: क्या
0: आप हैं कहाँ अभी?
2: अभी हम घर पे हैं।
0: तो आप कहीं शांत जगह पे चले जाइए, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है।
2: हाँ बोलिए।
0: आप किस क्लास में पढ़ते हैं इमरान?
2: अभी फोर क्लास में।
0: अभी फोर क्लास में है। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: एसडीएम पब्लिक स्कूल।
0: ओके, आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ हवा चल रही है।
2: हाँ
0: हाँ, तो आप हवा के रोक के तरफ ना बैठिए, हवा के वजह से आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। तो हट जाइए वहाँ से, या फिर दरवाजा बंद कर दीजिए, खिड़की जो भी है उसको बंद कर दीजिए। ओके, इमरान अंसारी जी आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: यस मैम।
0: ओके, दिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: यस मैम।
0: ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मामी गरम करके फिर पिता गरम कर, पिता गरम बना दो सर।
0: ओके, तो चलिए इमरान जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? ऑप्शन ए होली, बी दीपावली, सी छठ पूजा। आपका समय शुरू होता है अब।

0: हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94921 8029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
7: नमस्कार।
8: नमस्कार, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
7: हम शिवुल कुमार बोल रहे हैं।
8: कहाँ से बात कर रहे हैं शिवुल जी?
7: मीरगंज हरखौली मौजे से।
8: जी, क्या करते हैं?
7: वही घर ही पर है, इंटर तक पढ़ाई किए हैं।
8: तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए, तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
7: जी
8: जी, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
7: जी
8: तो चलिए शिवुल जी, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
7: पापा का नाम राम किशोर भगत, मम्मी का नाम मालती देवी।
8: ओके, तो चलिए शिवुल जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किससे बनती है? ऑप्शन ए समुद्री पौधे, बी अमेजन जंगल, सी हिमालय जंगल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर बी होगा,
0: अमेजन जंगल।
1: सी क्या बोले हैं?
0: हिमालय जंगल।
1: हिमालय को लॉक कीजिए, हिमालय को।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म नहीं है, लेकिन लॉक के सहारे चल रहे हैं।
0: ओके, चलिए सिबुल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा समुद्री पौधे, ना कि हिमालय जंगल। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर कोशिश करिएगा।
2: हेलो,
0: ये रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
2: बिमलेश्वर महेंद्र दास
0: जी। क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया है, अपना बताइए।
0: हमारा भी बढ़िया है। क्या करते हैं बिमलेश जी?
2: पढ़ते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: 12th में
0: जी। तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है?
2: अभी सोचे नहीं है।
0: ओके, तो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: यस मैम।
0: ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम श्रीमती सुरंजनी, पिता का नाम श्री सुभाष शर्मा।
0: ओके, तो लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
2: यस मैम।
0: ओके,

0: भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारत
1: पहला ही है भारतीय रिजर्व बैंक।
0: यही है, कंफर्म है?
1: यस मैम।
0: तो लॉक कर दूं ना?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए विमला जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किससे बनती है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किससे बनती है? ऑप्शन ए है समुद्री पौधे, ऑप्शन बी है अमेजन जंगल और ऑप्शन सी है हिमालय जंगल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: अमेजन जंगल को फिक्स
0: करें। अमेजन जंगल को फिक्स करें?
1: यस।
0: कंफर्म है?
1: नहीं।
0: तो लॉक कर दूं ना?
1: यस।
0: तो चलिए विमला जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अमेजन जंगल को फिक्स करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा समुद्री पौधे, ना कि अमेजन जंगल। जी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: मैं रुद्र शिवाज बोल रहा हूँ।
0: जी क्या करते हो रुद्र?
2: पढ़ाई।
0: किस क्लास में पढ़ते हो?
2: फोर
0: में।
2: हाँ।
0: ओके, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप?
2: और सैनिक माइंड।
0: ओके, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है?
2: मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी और संस्कृत है।
0: अच्छा, चलिए अच्छी बात है। आपके फोर क्लास में संस्कृत है?
2: हाँ।
0: तो चलिए रुद्र जी, आप क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: हेलो,
0: आप कहाँ हैं? पहले आप वहाँ से हटिए और हट के जाके कहीं बैठिए अच्छे जगह पे, जहाँ हवा की आवाज ना आए। आप कहाँ पे बैठे हैं?
2: अभी तो बरंडा में बैठा हूँ।
0: हाँ, तो बरंडा में हवा आ रहा है ना सामने से?
2: हाँ।
0: हाँ, तो हवा के पास से हट जाइए। हवा आ रहा है तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है?
2: ठीक है।
0: ठीक है, और आप वहाँ जाके बैठिए जहाँ घर में कोई भी ना हो, अकेले शांत जगह पे, ठीक है?
2: तो फिर ऊपर वाले कमरे में चलता हूँ।
0: ओके,
2: आ गया।
0: ओके, तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए रुद्र।
2: मम्मी का नाम है अनुपमा कुमारी और पापा का नाम है रवि श्रीवास्तव।
0: ओके, तो रुद्र जी लिया जाए आपसे आपका आज का पहला प्रश्न।
2: ठीक है।
0: ओके, तो आपसे आपका पहला प्रश्न ये है रुद्र,

0: हमें दिन में रोशनी कौन देता है? हमें दिन में रोशनी कौन देता है? ऑप्शन ए चांद, बी सूरज, सी बिजली। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन फिर से दोहराइएगा।
0: ऑप्शन ए चांद, बी सूरज, सी बिजली।
1: ऑप्शन बी सूरज।
0: कन्फर्म है आप?
1: हाँ।
0: लॉक कर दूँ?
1: हाँ।
0: ओके, तो चलिए रुद्र जी, आपके पहले प्रश्न का ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बी सूरज बिल्कुल सही है। तो आप तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, सभी फलों का राजा किसे कहा जाता है? सभी फलों का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए केला, बी सेब, सी आम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर सी।
0: कन्फर्म है आप?
1: हाँ।
0: लॉक करूँ?
1: हाँ।
0: ओके, तो चलिए रुद्र जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। लिया जाए आपसे आपका तीसरा प्रश्न।
1: ठीक है।
0: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन ए, हाँ बोलिए।
1: ऑप्शन की जरूरत नहीं है, टाइगर है।
0: टाइगर है?
1: हाँ।
0: कन्फर्म है?
1: हाँ।
0: ओके, तो चलिए रुद्र, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? ऑप्शन ए है होली, बी है दीपावली, सी है छठ पूजा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर सी छठ पूजा।
0: कन्फर्म है?
1: हाँ।
0: लॉक करूँ?
1: हाँ।
0: ओके, तो चलिए रुद्र जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और बता दे कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी छठ पूजा बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, बिहार का कौन सा फल बहुत प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा फल बहुत प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लीची, बी आम, सी केला। आपका समय शुरू होता है अब।
1: लीची।
0: कंफर्म है?
1: हाँ।
0: ओके, तो लॉक कर दूँ?
1: हाँ।
0: तो चलिए रुद्र जी, आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और बता दूं कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, गोपालगंज का पुराना नाम क्या है? गोपालगंज का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन दो।
1: हाँ।
0: ऑप्शन ए है गोपाल कृष्णगंज, बी है गोपालपुर और सी है मुबारकपुर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: गोपालपुर।
0: गोपालपुर, ऑप्शन बी।
1: हाँ।
0: कन्फर्म है?
1: हाँ।
0: लॉक करूँ?
1: हाँ।
0: ओके, तो चलिए रुद्र जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी गोपालपुर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा मुबारकपुर, ना कि गोपालपुर। ठीक है?
1: ठीक है।
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे को फिर कोशिश करिएगा।
1: ठीक है,
0: ओके।
2: तो दोस्तों ये रहा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के विनर, और हमें दीजिए अब जाने की इजाजत। और रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87 894 18744।

0: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमज़ ज़ेड पर।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99

0: संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: झनक झनक झन टपक टपक टपक झनक खनक खन धन धन धन धन धन धन।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना।

0: ये सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
4: इट्स बी ऑन द ट्रैक।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89733।

0: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक तकनीक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक तकनीक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पर शिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: प्रसाद क्लिनिक,
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में, और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92-899-22567 या 97-7-14-86-61
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमज़ ज़ैट पर।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
4: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6

0: ओ मेरी सासू की भर ले पानी।
1: आज कहीं ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो और ना की हो।
2: ए सेठानी, नीर बनन चलेगी
1: आज? ना जाऊंगा ना, गई तो पूरी बनठन कर जाऊंगी।
0: तेरे के न्यू जान में बिजली पड़े है, तू के नहरिए जागी, नुए चली जा।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा

0: रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिस कर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिस कर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: राधा, तुमने अपनी चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9939365923।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: ठक ठक
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: रुपए में HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8615
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
1: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: मेरे दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87-894-18744।
5: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: श्रोताओ, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: sea shipping route. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Orange alert for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, Telangana and Vidarbha for today. And in hockey, Indian women team enters Junior Asia Cup 2026 final, defeating South Korea 5-1 in Mochi, China. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत की अध्यक्षता में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबूधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से, लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित से। जी अंकित।
2: जी जागृति, देखिए।
1: हेलो अंकित, अभी आप शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मौजूद हैं और ये बताइए कि इस समय कार्यक्रम स्थल का माहौल कैसा है और सम्मेलन के बारे में आपके पास क्या कुछ अन्य जानकारियां हैं।
2: जी जागृति, देखिए इस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आज का सत्र है अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 11 सदस्य देशों के नेता क्लोज डोर सेशन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे ये नेता। इसके बाद भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए भी एकत्रित होंगे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स नेताओं के लिए सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। ये देखिए, भारत की अध्यक्षता में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस समय आर्थिक बिखराव, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव इन चुनौतियों को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे सहयोग की जरूरत है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो। देखिए, ब्रिक्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसकी वजह ये भी है कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वैश्विक जीडीपी में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 40% और वैश्विक व्यापार में करीब 25% हिस्सेदारी है। जी जागृति।
1: जी धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शी चिनफिंग आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद से। जी आनंद, प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से अलग अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं, और अगर आज की बात करें तो किन देशों के साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता होने का कार्यक्रम है?
3: जी जागृति, आज का दिन भारत के लिए द्विपक्षीय और राजनीतिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है।
1: जी,
3: आज सुबह से ही ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इथियोपिया ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूदा अवसरों पर चर्चा हुई। अगर आज हम शाम के कार्यक्रम की बात करें तो जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति चिनफिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से सीमा पर तनाव कम करने और व्यापार असंतुलन के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। जी जागृति।
1: जी आनंद, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बेलारूस के विदेश मंत्री मार्क्सन रिजनकोफ आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात की। इससे पहले शिखर सम्मेलन से अलग कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगशो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के भारत दौरे के बीच शुरू हो रही है। इस साल मार्च में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की थीं, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है।
5: इंडियाज इनोवेशन।
6: भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा ने नीस में आयोजित अपने पहले वैश्विक प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित किया है। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान नवाचार स्थापित किया है भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रयोगशाला से बाजार तक और भारत से विश्व।
5: फ्रॉम लैब टू मार्केट फ्रॉम इंडिया टू वर्ल्ड।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। इस तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जल डमरू बध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गो में से एक है। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल एजीटीएफ और देश छोड़कर भागे लोगों की निगरानी और प्रत्यर्पण की शाखा ओएफटीईसी ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक विक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज सुबह उसे भारत लेकर आई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि कई इलाके अब भी प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों के 2000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और

0: बचाव अभियान जारी है।
1: प्रदेश में गंगा, सोन, बागमती, घाघरा और पुनपुन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। हालांकि गंगा और पुनपुन कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी के साथ गंगा, गंडक, कोसी और सोन के तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेश जी।
2: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि गुरू ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: ये आकाशवाणी है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इससे पहले पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने कल पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबुधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
7: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
8: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
9: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
8: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
9: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
8: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
9: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
8: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
9: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
0: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
0: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिस कर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
0: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन

0: एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 99393-65923।

0: रोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
1: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
1: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894470 या 9198886973।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097065।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डीलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87894-18744।
7: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
8: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
7: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
8: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
7: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
8: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
7: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में, और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978855 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94-704-34-468 पे।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा, मिला ही नहीं
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे। Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
1: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029494911। जी हां, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
2: हेलो
3: हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग नाइन में।
3: जी मैम, कैसे हैं?
2: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
3: जी हम भी अच्छे हैं मनोरमा मैम।
2: जी जी,
3: क्या बात है, आज भी आपसे बात हो गई।
2: जी
3: बहुत खुशी हुई, कॉल लग गया मेरा।
2: जी लेकिन एक बात बता दूँ आपको, लोग निकालते ना तो इधर उधर हो जाता है, तो इसकी वजह से लेट हो जाता।
3: मैम नहीं, एक बार और किए थे लेकिन लास्ट में तो बातें में बोली थी कि बजेगा फर्स्ट में, लेकिन बजा नहीं।
2: अच्छा,
3: बताइए कितना कोशिश करके लगाते हैं एक नंबर में हम।
2: जी जी, अब इसमें हम लोग का ही कर सकते हैं बताइए, हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि हाँ आप कहीं बजे, लेकिन जब हम लोग कॉल निकालते हैं ना इसमें से तो कॉल इधर उधर हो जाता है, इसके लिए आप नाराज तो नहीं है?
3: जी मैम नहीं, मतलब कहने वालों ने कहा है कोशिश फिर से करना चाहिए, फिर से कोशिश कीजिएगा मैम।
2: जी कोशिश तो सर्वे करेंगे,
3: इसके लिए हमको बहुत खुशी लगी। और मैम वो रानी जी है, बहुत लंबा बात कर रही थी।
2: जी जी,
3: उनका फरमाइश मतलब अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है हमको उनका फरमाइश, बातों के साथ फरमाइश भी अच्छा रहता है। और वहाँ कहाँ का सुनील जी है, उनका भी अच्छा लगता है फरमाइश। मैम वो तो क्यों नहीं चल रहा है?
2: तो अभी इसलिए नहीं चल रहा है कि
3: मैम तो आ जाइए, आप भी चलाइए ना।
2: तो मैं तो चलाती, लेकिन अगर आप लोग इतना मुश्किल से कॉल कर रहे हैं, लो ये नहीं बजेगा तो फिर दिक्कत होगा ना, इसको भी तो बजाना जरूरी है।
3: एक बात है, ये सो तो इम्पोर्टेंट है, ये सो तो इम्पोर्टेंट है।
2: जी
3: हेलो माइक्रोवेव।
2: हाँ
3: मैम, तो मेरा नाम बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद की पहचान में। जी मैम, तो हमको इतिहास में से गाना सुनाइएगा। गाना का नाम है चोरी चोरी।
2: क्या गा के बता सकते हैं?
3: गाना चाहते नहीं, इसलिए मेरा आवाज अच्छा नहीं। इसलिए
2: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है,
3: कोई सुनेगा तो।

0: अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए
1: नहीं, नहीं। आपका आवाज अच्छा है इसीलिए तो बोले जाने के लिए।
0: नहीं आप तो सबसे बोलती है, हमको बहुत अच्छा लगता है सुनते हैं तो, कोई भी कार्यक्रम मिस नहीं करते हैं, खासकर आपका कार्यक्रम आता है तो।
1: अच्छा जी,
0: क्योंकि हिंदी टीचर जो है राधा मुखर्जी, उनका आवाज और आपका आवाज मिलता है।
1: ये बात है,
0: हर बहुत अच्छा लगता है हमको सुनने में। देखिए मैं रेडियो सिस्टम पे इतना लगा है ना, हर कोई काम करके ये सुनते हैं पहले, तो बहुत ज्यादा आदत लग गया है मैं इसका।
1: चलिए बहुत अच्छी की बात है। जो गाना बताया है वो गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं।
0: हाँ डेडिकेट है आप भारतीय जीवन को और सभी रेडियो
1: दोस्तों
0: करने वाले हैं गाना सभी को, और जो नहीं पसंद करेंगे उनको भी।
1: नहीं नहीं सबको पसंद करेगा ऐसा थोड़ी है।
0: मैम बताइएगा गाना कैसा है?
1: गाना तो बहुत अच्छा है।
0: जी मैम तो कोशिश कीजिएगा इतना बजाने का।
1: जी जी
0: और भी लोग लाइन में होंगे तब तक के लिए।
1: जी बाय, प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: ओके मैम।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोपराइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87-894-18744।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है

0: ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हर वक्त हर लम्हे अजीज होते हैं दुनिया में, वो खुश नसीब होते हैं। हर वक्त हर लम्हे अजीज होते हैं दुनिया में, वो खुश नसीब होते हैं। दूर से तो हम इतना याद करते हैं उन्हें, दूर से हम इतना याद करते हैं उन्हें, क्या हाल होगा जब दोनों करीब होते हैं।
4: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
3: 90.4 FM में। सुल्तान डिस्ट्रिक्ट सिवान से, फिलहाल दिल्ली में हूँ। कैसी है?
4: जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए।
3: हाँ मैं भी अच्छा हूँ।
4: हाँ, और आपका?
3: मेरा तो हो गया, तो नाश्ता कर लेता हूँ और नाश्ता वास्ता हो गया है। आज धूप है,
4: आपकी आवाज कट रही है।
3: आप सही है ना?
4: हाँ हाँ, आप सही आ रही है।
3: धूप थोड़ा है ज्यादा, आज दो दिन से बारिश हो रही थी बीच में, अभी नहीं हो रहा है। तो धूप है, हवा भी है, और समझिए अगर धीरे धीरे तो गर्मी जा ही रहा है, कुछ गर्मी अक्टूबर पड़ेगा।
4: जी जी।
3: और सब बढ़िया है?
4: जी सब बढ़िया है।
3: योर वोट ऑफ चॉइस बंद हो गया क्या?
4: नहीं नहीं, चलेगा।
3: चलेगा
4: जी।
3: अच्छा,
4: आज नहीं चलेगा, दो दिन बाद चलेगा।
3: अच्छा, दो दिन बाद चलेगा।
4: जी जी, कुछ प्रॉब्लम हो गया इसकी वजह से।
3: हाँ हमको पता है
4: जी,
3: और मैं रेडियो का ध्यान रखता हूँ, खबर मिलता रहता मुझे। हाँ तो भैया, पुराना लिस्टनर है वो, उनको मालूम चलेगा नहीं?
4: जी बिल्कुल।
3: वो आज गाना सुनवा दीजिए, फिर मोहरा का टिप टिप बरसा पानी। डेडिकेट है मोहरा का टिप टिप बरसा पानी, डेडिकेट है सबसे पहले आपको। आयशा अर्नब सिद्दीकी, सोनिया परवीन, अख्तर जी, अहमद अली, सबीना सब्बा सिद्दीकी, रोशनी कुमारी, हेना हजरा और निशा सुकुनवा, भास्कर भरजू, उमा शंकर, दिलीप राम, मुकेश, उत्तम सोनी, उमा शंकर और जितने लोग सुन रहे हैं, दिवेंद्र सिंह, जितने लोग सुन रहे हैं, सभी आलम, नाम हुसैन, सबको सुनवा दीजिएगा। ओके नमस्कार।
4: ओके नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
0: कैसी हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए।
0: मैम हम भी ठीक हैं मैम। तो आप सब बताइए कैसी हैं, क्या खाना वाना खा कर आई हैं कि नहीं?
1: जी जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और खाना भी हो गया। और आपने खाया?
0: जी मैम।
1: तो क्या करेंगे अभी आप?
0: जी मैम बैठे हैं, हम फोन लगा रहे थे, 41 बार लगाए हैं फोन, 11:20 पर तो बीच में छोड़ दिए, देखने लगे मोबाइल, लगता ही नहीं है।
1: लेकिन हार नहीं मानती हूँ।
0: देखिए कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, गंगा नदी कभी पार नहीं होती।
1: जी जी, बात तो बिल्कुल सही है।
0: कोशिश करिएगा तो एक दिन मंजिल मिल जाएगा।
1: जी जी बिल्कुल।
0: अब मैम गाना सुनना है।
1: बता दीजिए।
0: अब राजा बाबू में के जो तीज नहीं करती थी वो अमर पारी, और उसी में के गाना सुनना है मैम।
1: अच्छा, और गाना सुनवाना भी है किसी को?
0: मैम आपको, तीन को जितना तीज व्रत करती हैं सभी बहने और श्रोताओं को सुनाना चाहती
1: हूँ। ओके, वैसे अपना नाम नहीं बताएंगे?
0: मैम हम हाजीपुर से बोल रहे हैं मैम, सुनीता देवी।
1: ओके जी, तो सबको घर परिवार में ठीक है?
0: जी मैम सभी ठीक है, बच्चा लोग पढ़ने चले गया है, लोग हम भी अकेले हैं, एक बजे आएगा लोग पढ़।
1: तो उनके लिए खाना वाना तो रेडी हो गया?
0: जी मैम अब रेडी करेंगे दोपहरिया का खाना।
1: जी जी ठीक है, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है मैम, थैंक यू मैम।
1: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
10: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
11: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
12: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
13: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
14: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
12: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
11: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
12: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87-894-18-744।
15: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
16: Now pick it up, pick it up.
17: Hello.
16: Now pick your phone up.
17: Hello.
16: Pick it up, pick it up.
17: Hello.
16: Now pick your phone up.
17: Hello.
18: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
19: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
9: नमस्ते,
1: कैसी हैं?
9: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए।
1: मैं भी ठीक हूँ, आज तो खाना खा ली।
9: और आपने?
1: मैं भी खा ली।
9: वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: नवादा से बोल रही हूँ।
9: कहाँ से?
1: नवादा से।
9: अच्छा, और आपका नाम?
1: प्रीति।
9: प्रीति
1: जी, प्रीति।
9: अच्छा, और बताइए।
1: आज सब ठीक है, गाना सुना?
9: बता दीजिए।
1: बता रही हूँ,

0: गलत सॉन्ग है।
1: जी जी आप तो बहुत अच्छा गा रही हैं।
0: जी थैंक यू मैम।
1: जी अब जो गाना बताई हैं आप, वो गाना किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं?
0: हाँ, आपको, भारती मैम को, मेरी बहन को, और मैम ये जो सॉन्ग है ना वो 16 साल का है, न्यू वाला, वही बताइएगा।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी मैम, थैंक यू।
1: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजीव 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 90.4 एफएम में। वालेकुम अस्सलाम जी, बढ़िया सुनिए, अपन बताएंगे कल क्या होता
1: है।
0: हाँ ठीक बनी रहुआ।
1: हाँ अब ठीक बन पहले से।
0: पहले से आराम बन।
1: हाँ जी पहले से आराम बन।
0: ठीक आराम बन। नाम बता दिया अपन।
1: रेशमा बोलते
0: नहीं।
1: रेशमा बोलते पठान पड़ी।
0: पहचाना तो बोल रही मैं, लेकिन फिर भी पूछना जरूरी बात।
1: हाँ जब पूछे तब सब कोई पता मालूम चले की कहाँ से जुड़ल बा ना। जी
0: जी सब लोग सुने ला ना।
1: सभी जुड़ेगा अपनी गाँव से जुड़े थी रानी बाड़ी हरकम से। बहुत बात कर ली। ज्यादा देर में बात होगा करे रिकॉर्डिया में करो साथ में ज्यादा ही होगा। हर कुछ कर ली पठान पट्टी रामचंद्र सभी से ये नहीं करता। आज बजा दे गाना कौन सी के
0: कौन सा
1: कैसे हो जरा प्यार से लड़ते लड़ते।
0: और गाना कैसे सुनाए किसी
1: रोस में बाती में सुनी में जितना लोग रेडियो सुनता सब कोई सुनी। चली मैडम जी
0: नाम
1: तब चली भाषा ना तो रोग का नहीं चल कम्प्लीट हो तो रिकॉर्डिंग करे में
0: साढ़े बारह तक तो रिकॉर्ड करे बात ही निकल के बना।
1: हाँ फिर सुन दो सजा तो लगा कर रखा ना। ज्यादा लंबा टाइम नहीं क्या मिलता
0: ना ना दो तीन दिन में उत्तर
1: लगेगी।
0: टाइम मिली तो मैं स्टार्ट कर दूंगी।
1: और टाइम मिल तो स्टार्ट करो बस एक बजे से।
0: चलिए फिर तो
1: ठीक
0: नहीं करते
1: ठीक
0: जी सुनत रही सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 एफएम।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
9: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो,
9: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
10: राम राम साहू गुना से।
9: जी कहां से?
10: मेरा नाम है चमेली।
9: जी और कहां से?
10: मैं हूं मौलाना अलवेली गुना से।
9: अच्छा तो फिर क्या है आज की फरमाइश?
10: एक गोटे डाल लेगा जब निकलू जब डाल।
9: ओके और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
10: सभी को सुनाना चाहूंगा।
9: ओके जी तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
10: कब बजेगा ये गाना?
9: शाम को बजेगा 5 से 7 के बीच।
10: ठीक है भाई।
9: ओके सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: हेलो
1: जी नमस्कार
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 FM। जी कैसे हैं आप?
1: मैडम जी खाना खा रहे हैं और आपसे बात चल रही है।
0: अच्छा, तो और सब बताइए, आपके घर परिवार में सब कोई ठीक है?
1: सब ठीक है, और सभी रेडियो सुनते हैं हमारे घर में।
0: अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छे की बात है। तो फिर क्या है आज की फरमाइश?
1: आज की फरमाइश रहेगी, पिक्चर का नाम है हम तुम्हारे सनम, और इसमें गाना है गले में लाल टाई, घर में एक चारपाई, तकिया और एक हम दो, एक ही रजाई, सर्दी कैसे जाएगी।
0: ओके, डेडिकेट भी है?
1: जी जी मैडम, सबसे पहले आपको है गजराज सिंह लोधी है, मांगीलाल चंदेल है, मांगीलाल धाकड़ है, गोपाल ओझा जी है, जितेंद्र धाकड़ जी है, इन सभी लोगों के लिए गाना डेडिकेट रहेगा, जितने भी रिमझिम सुन रहे हैं उनको भी रहेगा।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
8: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: Now pick your phone up.
11: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 FM में।
13: गोपाल बोल रहा हूँ, आपका सबसे जिला बोल।
12: क्या हाल चाल है गोपाल जी?
13: बढ़िया है, घर पर है, अभी से धूप में चल रहे।
12: कहाँ से बोल रहे हैं?
13: जिला गुना का।
12: क्या हो?
13: मनोरमा जी बोल रहे हैं आप?
12: जी हाँ
13: जी, आपसे तो बहुत दिनों बात हो रही
12: है। तो क्या काफी दिन बात सही है?
13: हाँ जी, अभी तो क्योंकि लगाया था 2 सितम्बर को लगाया था, आई लगाया। गाना सुनना है?
12: बता रही
13: है, सुनना है वो दिल वाले ले जाएंगे, कुमार सानू, लता मंगेशकर की आवाज में, वो जी देखा तो जाना सनम प्यार होता है, दीवाना सनम जी वाला। डेडिकेट भी आएगा?
12: बता दिए।
13: सुनील साहू जी हैं, ज्योति साहू जी हैं, जीतन धाकड़ जी हैं, और आपके लिए भी है, और फिल्म जो सुनने वाले भी है।
12: ओके जी, तो प्ले करते हैं गाना आपका?
13: कर दीजिए
12: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 FM में।
0: थैंक यू।
1: नाम बताओ।
0: नूर हासना से।
1: और कहाँ से?
0: हासना नूर बात कर रही हूँ।
1: तो क्या है आपकी फरमाइश?
0: पाकिस्तानी सॉन्ग बजा दीजिएगा।
1: कौन सा?
0: पाकिस्तानी सॉन्ग।
1: ओके, और डेडिकेट भी है?
0: हाँ, रेडियो सुनने वाले सभी दोस्त को और आपको भी।
1: ओके जी, तो फिर भी पसंद है आप।
0: जी थैंक यू
1: जी।
2: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

0: पर।
1: प्रसाद क्लिनिक।
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
5: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
6: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
5: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527

0: 88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
5: जी मैं सुबह से बोल रहा हूँ, झारखंड से।
4: जी
5: कैसे हैं आप?
4: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए।
5: बिल्कुल ठीक हूँ। उधर का मौसम का क्या हाल है?
4: मौसम धूप तो निकला हुआ है,
5: इधर लगातार बारिश है। कल तो बहुत जोर से बारिश हुई और अभी भी बारिश होने की संभावना है, लगातार 7-8 दिन से बारिश होते है। आज सुना दिए मैम, पुरानी फिल्म है सच्चे फिल्म का गाना, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राखी जो है, फिल्म का गाना है महेंद्र कपूर की आवाज में, गीत के बोल हैं मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, उम्मीद की फूल बन के एक तरह के गीत वो खिल के फूल बन गई।
4: एक बार और,
5: मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, उम्मीद की फूल गली खिल के फूल हो गई। जी सबसे पहले मैं आपको और जितने भी रेडियो रिमझिम के लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ।
4: चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
5: जी मैम, जी
4: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
5: थैंक यू।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: बहुत प्रयास करने के बाद बिहार भागलपुर जिला तिनसंगा दियारा महाराजगंज टोला से बोल रहे हैं।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हो? हम लोग गंगा कटाव में हैं, मेरे घर में सब हेलो रेडियो इंजन छूटी रहती है।
0: अच्छा
1: जी, मेरे बेटी सब है सपना कुमारी, ऋषि राजकुमार, अनिश कुमार सब। गाना सुना है चली आना फोन की दुकान से।
0: कौन सा?
1: चली आना फोन की दुकान से।
0: अच्छा, क्या आप दो लाइन गा के बता सकते हैं?
1: बता सकते हैं।
0: ये गाना आप किसी को सुनाना नहीं चाहते हैं?
1: राजकुमार है, अनिश कुमार है, सपना कुमारी, बहुत सारे भाई दोस्त को।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: चलिए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956597644।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
12: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो, हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
13: नमस्कार मैम, कैसे हैं?
14: नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप बताइए।
13: अभी ठीक है, आप लोगों दुआ से।
14: जी वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
13: हम बोल रहे हैं ओम साइकिल बंजारी रोड ट्यूशन के सामने गोपालगंज से, राघव जी।
14: खरी तो कैसे हैं आप?
13: बहुत बढ़िया है, आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं?
14: जी हम लोग भी बढ़िया है।
13: चलिए बढ़िया के काम है
14: जी। वो नाश्ता हो गया आपका?
13: जी जी नाश्ता हो गया है, अभी दुकान पे मैं। आपका नाश्ता हुआ है?
14: हो गया।
13: ठीक है,
14: तो फिर क्या है
13: आपका नाम मैम?
14: जी मेरा नाम मनोरमा।
13: मनोरमा, अच्छा दूसरी बार बात हो रही है।
14: जी जी,
13: आज सॉन्ग चला दीजिएगा, नफरत की दुनिया छोड़ छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार।
14: क्या आप दो लाइन गा के मुझे बता सकते हैं?
13: मैम गाना तो मैं नहीं गाता हूँ, मैं सिलाई करता हूँ।
14: चलिए कोई बात नहीं,
13: कहिएगा तो थोड़ा बहुत गुनगुना देंगे।
14: जी जी बिल्कुल।

0: बस इतना ही
1: जी। इतना अच्छा तो गा रहे हैं आप।
0: हाँ इतना हम गा रहे हैं। आप लोग सब शोर चलाते हैं तो आप लोग का अच्छा आवाज आता है।
1: नहीं नहीं आप भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, इसीलिए तो बोले आपसे कि गा के बताते तो सही रहता।
0: उतना हम लोग का टैलेंट नहीं है गाना गाने में।
1: नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा गाए हैं। पर जो गाना बताए वो गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
0: पहले तो आपको और जितना रेडियो रंजन जो सुन रहे हैं सभी लोगों के साथ में सुनना चाहता हूँ। और आइए आपके लिए चाय स्पेशल आया है पीने के लिए।
1: जी जी बिल्कुल आ रहे हैं, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: थैंक यू मैम
1: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन में।
0: सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: मैं अहमद अली, करियावाद नंबर 1 से। कैसे हैं मैम?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए।
0: हम तो अच्छे हैं। भारती मैम बोल रहे हैं?
1: नहीं।
0: मनोरमा मैम
1: जी,
0: योर वॉइस योर चॉइस क्यों नहीं हो रहा है मैम? नहीं है क्या भारती मैम?
1: नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसकी वजह से नहीं चल रहा है, 2 दिन बाद चलेंगे।
0: अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। आप कैसी हैं?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप ठीक ठाक है ना?
0: हाँ हम लोग तो अच्छा ही है। चल नहीं रहा है इसीलिए दिल नहीं लग रहा है, खाली गाना दे रहा है।
1: चलिए, सो भी बहुत जल्द चलेगा।
0: हाँ ये सो चलता है।
1: जी जी।
0: आज हमको सॉन्ग सुना दीजिए, दीदार मुझे से। दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी। क्या बताए मैम, मेरे सनम बस यूं ही है ना, मोहब्बत बढ़ती जाएगी है ना, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी।
1: जी जी। ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: सबसे पहले तो आपको और अख्तरी को और भारती मैम को, दिलीप भाई को, कमरान भाई को, राघव जी को, समीर भाई को और जो भी रेडियो रिंगिंग यहाँ से सुन रहे हैं सबको, असलम भाई है, फिरोज भाई है, सभी के साथ
1: आपका
0: थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए।
1: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ किससे इलाज कराऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
10: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: Hello. जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 एफएम में।
12: जी नमस्ते मैम।
11: नमस्ते,
12: कौन बोल रही है मैम? भारती नहीं है, मनोरमा मैम।
11: मनोरमा
12: जी बोल रहे हैं मैम कि हम सिद्धार्थ बोल रहे हैं बरौली से।
11: जी जी क्या हाल चाल है?
12: ठीक है, अपना बताइए। अपना बताइए मैम, आप ठीक है?
11: जी जी मैं बढ़िया हूँ।
12: ठीक है मैम, मैंने गाना सुना था ऐसे तेरी याद आती है,
11: क्या दो लाइन गा के बता सकते
12: हैं? गाना नहीं गाते हैं, वो सुनते हैं।
11: अच्छा जी, दो लाइन ही गाना है आपको?
12: आगे चाहिए, आगे कोशिश करेंगे, अभी नहीं।
11: ओके जी, और गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
12: सब रेडियो सुनने वाले सभी भाइयों को, आपको और भारती मैम को।
11: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
12: थैंक यू मैम।
11: जी

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: गाना तो रिकॉर्ड होता है और बाद में बहुत लेट से बजता है।
1: जी जी, क्या है ना, बहुत सारे कॉल आ जाते हैं तो फिर आगे पीछे हो जाता है।
0: आज तो हमारा लेट है, लेकिन उस दिन फोन किए थे सोमवार को, तो लग रहा था कि तीसरे नंबर पे थे हम।
1: अच्छा,
0: लेकिन गाना बजा लास्ट में।
1: नहीं, कोई बात नहीं है, जो लास्ट में करता है उसका ही पहले बजता है, क्योंकि कॉल आगे पीछे हो जाता है। तो फिर क्या है आज की फरमाइश?
0: फरमाइश के राजा हिंदुस्तानी का टाइटल सॉन्ग बजा दीजिए मैम।
1: ओके, और डेडिकेट भी करना चाहते हैं
0: सभी को, डेडिकेट सुनने वाले श्रोता सभी को।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।

0: Now pick it up,
1: hello.
0: Now pick your phone up,
1: hello.
0: Pick it up,
1: hello.
0: Now pick your phone up.
2: श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8029494 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: ठक ठक
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
7: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट।

0: सुंदर एमए तक पढ़ी हुई, उम्र 22 वर्ष, ये भी मेरे काम की नहीं, उम्र 25 वर्ष नहीं चलेगी। आज भी लगता है मेरे काम की कोई कन्या नहीं मिलेगी। 23 वर्ष, 25 वर्ष, ओफो, आगे पढ़ूं, सुशील 18 वर्ष, हाँ, ये कुछ चम रही है, क्या है, फिर से पढ़ूं, सुशील अति सुंदर, उम्र 18 वर्ष, 18 वर्ष, कद 152 सेंटीमीटर, PSC तक पढ़ी कन्या के लिए हैंडसम, 500-600 रुपए तनख्वाह पाने वाला, 22 से 28 वर्ष की उम्र वाले लंबे कंध के वर की जरूरत है। कृपया स्वयं आकर मिले तथा 1-2 दिन घर में मेहमान बनकर रहे।
1: कमाल है
2: भाई, कमाल हो गया।
0: नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं।
1: अरे यार, अब मुझसे क्या छुपा रहा है, मैं भी तो देखो जरा। ओ अखबार, क्यों भाई, आज भी लड़की पसंद आई या नहीं?
0: अरे मैं तो कहता हूँ यार कि 18-20 वर्ष की लड़की का चक्कर छोड़ दे।
1: एक बात बता भैया, भला ऐसी लड़की वाले अखबार में विज्ञापन क्यों देंगे?
0: अरे उन्हें तो घर बैठे बिठाए रिश्ते मिल जाएंगे।
3: अरे नहीं यार, आज मेरे मतलब की कन्या मिल गई।
1: क्या सच?
3: हाँ, जैसी मैं चाहता हूँ ना, बिल्कुल वैसी।
1: अरे जरा अखबार तो दे, मैं भी तो देखूं जरा।
0: ये देखिए, ये देख, लंबा कद,
1: वाह,
3: अति सुंदर,
1: बिल्कुल ठीक,
3: पढ़ी लिखी, उम्र 18 वर्ष।
1: अरे वाह, भाई मुबारक हो। तेरे मतलब की लड़की बिल्कुल वैसी ही मिली है जैसी तू चाहता था। भाई कांग्रेचुलेशंस। मगर ये नीचे क्या लिखा है? कृपया खुद आकर मिले तथा 1-2 दिन घर में मेहमान बनकर रहे। ये क्या माजरा है यार?
0: यही बात तो मेरी समझ में नहीं आई यार। खुद मिलना तो ठीक है, लेकिन मेहमान बनकर रहना, ये कौन सा नया तरीका है?
1: वैसे देख, मेरी नजर में ये सबसे अच्छा तरीका है।
0: वो कैसे?
1: देख, शादी से पहले लड़के और लड़की वालों की बातचीत होती है, होती है ना? और उसके बाद लड़का लड़की को देखने दिखाने का चक्कर चलता है, उसके बाद छानबीन होती है, अरे उसके बाद जाके कहीं शादी तय हो पाती है। और यहाँ सारे काम एक साथ हो रहे हैं, अरे 2 ही दिन में हाँ या ना का जवाब मिल जाएगा।
0: हाँ यार, कहे तो तू ठीक रहा है, यही बात होगी।
1: अरे तो फिर देर किस बात की है, आज ही पहुंच जाओ लड़की वालों के यहाँ।
3: लेकिन यार मुझे मुझे शर्म आती है, मतलब अनजानों के बीच 2 दिन, तू ही सोच।
1: अरे यार तू भी क्या बात करता है, तू 2 दिन की बात कर रहा है। अरे अगर मेरी शादी नहीं हुई होती ना, तो मैं ऐसी जगह 10 दिन तक काटने के लिए तैयार हूँ।
0: ठीक है, अगर मैं चला भी जाऊं और लड़की पसंद ना आए तो ठुक गए ना मेरे तो रुपए।
1: तेरे की यार, तू रहा बुद्धू का बुद्धू। अरे भैया, जो 2 दिन तक फोकट की खाएगा, अरे उसका भी कोई हिसाब लगाया कि नहीं?
0: हाँ।
1: अरे तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हर लड़की वालों को यही तरीका अपनाना चाहिए। और अगर मैं तेरी जगह होता ना, तो मैं एक भी लड़की पसंद नहीं करता और ये सिलसिला चलाए रखता। अरे आज शाम कोई पहुंच जा, देर करेगा तो कोई और लड़का हाथ मार लेगा। हाँ
0: तो ठीक है, मैं जाने की तैयारी करता हूँ, परसों तक लौटा।
1: हाँ जल्दी चला जा, विश यू बेस्ट ऑफ लक।
0: थैंक यू।
1: अच्छा मैं चलता हूँ।
0: हाँ
4: शर्मा जी, शर्मा जी।
5: अरे आ रही हूँ, आ रही हूँ, शोर मत मचा।
0: जी शर्मा जी का घर यही है।
5: शर्मा जी? कौन शर्मा
0: जी? वो विनोद शर्मा।
5: हाँ यही है, यही है। मगर आप कौन हैं?
0: जी जी जी, मैंने अखबार में एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था।
5: अच्छा।
0: क्या आप ही ने दिया था?
5: हमने ही दिया था। आइए आइए, वहां क्यों खड़े हैं, अंदर आ जाइए।
0: जी जी थैंक यू।
5: बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए।
0: जी, जी आप कुछ सुस्त सी दिखाई दे रही हैं, खैरियत तो है?
5: बस यूं ही, आज सुबह से कुछ बुखार चढ़ गया है, पूरा बदन जैसे टूटा जा रहा है।
0: आप आराम कीजिए,
1: चलिए फिर ये नहीं।
5: अरे आराम करूंगी तो घर का काम कौन करेगा?
1: आपके वो शर्मा जी
5: वो तो दफ्तर गए हैं।
1: क्या घर में और कोई नहीं है?
5: बस एक लड़की है मेरी, वो भी बाहर गई है।
1: हा? आप बीमार हैं और घर में कोई नहीं?
5: मजबूरी है, मेरी एक सहेली है उसकी लड़की की शादी है।
1: जी
5: शोभा वहीं गई है, शोभा मेरी बेटी है। अब आप ही बताइए, सहेली की लड़की की शादी है, मैं नहीं जा सकी तो बेटी को तो भेजना ही था। आप चिंता न कीजिए, वो कल सुबह तक जरूर आ जाएगी।
1: जी फिर मैं किसी और दिन आ जाऊंगा।
5: अरे रे रे रे, ये आप क्या कह रहे हैं, इतनी दूर से आप आए हैं और लड़की देखे बिना ही चले जाएंगे?
1: जी आपको मेरे यहाँ रहने से कष्ट होगा।
5: हाय कैसा कष्ट, अरे अपनों का भी कोई कष्ट होता है क्या? देखो बातों ही बातों में मैं चाय के लिए भी भूल गई। आप बैठिए, मैं भी चाय बना कर लाती हूँ।
1: ये आप क्या कर रही हैं? उठिए मत, आपको बुखार है, चाय कोई जरूरी तो नहीं?
5: अरे आपके बहाने मैं भी पी लूंगी, सुबह से कोई बनाने वाला नहीं था, मैंने भी नहीं पी है, मैं बनाने की कोशिश करती हूँ।
1: नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं ही आपको बना के पिला देता हूँ।
5: अरे आप भी क्या सोच रहे होंगे, पर
1: मैं नहीं, इसमें सोचने की क्या बात है, मैं अभी बना कर लाया। लीजिए चाय पीजिए।
5: बड़ी जल्दी बना कर लाए आप।
1: जी
5: अरे मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है, मगर क्या करूं, मजबूर हूँ। देखा इतनी बातें कर ली आपसे, लेकिन आपका नाम तक नहीं पूछा।
1: जी मुझे महेश कहते हैं।
5: महेश
1: जी
5: कहाँ तक पढ़े हो?
1: जी एमए किया है और फैक्ट्री में मैनेजर हूँ।
5: अरे वाह, बस मजा आ गया, हमें तो आप जैसा ही लड़का चाहिए था। आप कहीं भटकने की जरूरत नहीं, शोभा आ जाए उसे देख लीजिए, फिर जल्दी ही शादी तय कर देंगे। आप थके हुए आए हैं, आराम कर लो, मैं रोटी का प्रबंध करती हूँ। पका तो नहीं सकती, फिर भी कोशिश करती हूँ, या ठहरो किसी से कहकर बाजार से मंगवा लूंगी।
1: आप पकाइए भी नहीं, आपको पूरा आराम चाहिए, मैं होटल में जाके खा लूंगा।
5: आप क्यों होटल में जाएंगे जी? अरे मैं क्या नहीं मंगवा सकती, और फिर मुझे भी तो अपने लिए मंगवाना है।
1: लाइए मुझे बर्तन दे दीजिए, मैं ही होटल से ला देता हूँ। अच्छा? आप किसी और को क्यों तकलीफ देती है?
5: अच्छा अच्छा तो सुनो, किचन से बड़ा टिफिन ले जाओ, और सुनो ये पैसे भी दिए देती हूँ।
1: नहीं पैसे आप रहने दीजिए, क्या आपने मुझे घर का नहीं समझा?
5: क्यों नहीं समझा, अब तो आप पक्के हमारे घर के सदस्य हैं।
1: तो बताइए क्या क्या लाऊं खाने के लिए?
5: अरे ऐसा कीजिए, आप मटर पनीर ले आइए, और हाँ वो कोफ्ते और दही बड़े लाना ना भूलना, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं।
1: जी ठीक है ले आऊंगा, और कुछ लाना है?
5: सुनो जब आप ला ही रहे हो तो शाम का खाना भी लेते आना, शाम को भी मैं कहाँ पका पाऊँ।
1: जी हाँ ठीक है, शाम का खाना भी ले आऊंगा।
5: सुनो महेश, वो एग करी जरूर लाना, हर शर्मा जी को बहुत पसंद है, समझे? मैं भी थोड़ी खा लूंगी, कहते हैं बुखार में ये दवाई का काम करती है, क्यों है ना?
1: है तो सही, लेकिन आपको तो अभी फल खाने चाहिए।
5: फल? ठीक है ठीक है।

0: हो तो शोभा को आज दिखा दे।
1: हाँ हाँ दिखा दीजिए, जरूर दिखा दीजिए, बड़ी हूर की परी है ना। आहिस्ता आहिस्ता चुप हो जाओ, मेहमान आ रहा है।
0: अरे ये तो बुरी तरह से बूझे से लदा हुआ है, मैं इसकी मदद कर देता हूँ। लाओ लाओ लाओ, मुझे दे दो ये झूला, काफी भारी है।
2: जी धन्यवाद।
1: आज तो आप बैंक से पैसे निकलवा कर लाए होंगे ना।
0: वो कमला, आज मैं पैसे नहीं निकलवा सका।
1: क्या पैसे नहीं निकलवाए? हाँ। मगर क्यों?
0: वहाँ जाकर पता लगा, हाँ वहाँ जाकर पता लगा कि उस बैंक में एक बाबू का देहांत हो गया है और पूरे बैंक की छुट्टी कर दी गई है।
1: क्या आज भी पैसे नहीं मिले? मनीष जी क्यों सोचते होंगे? सुनो जी, आप जा रहे हैं या मैं किसी से मांगने जाऊँ?
2: जी जी जी, आप कहाँ जाएंगी? मैंने कहा ना कल दे देंगे पैसे। पैसे कौन से भागे जा रहे हैं?
1: कल क्यों, अभी क्यों नहीं? चलो जी मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आपको कहीं से नहीं मिले तो मुझे कहीं से मिल जाएंगे।
0: हाँ ठीक है, तो फिर ऐसा करो तुम भी मेरे साथ चलो।
2: रुकिए रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। चले गए। आखिर ये माजरा क्या है, तेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। दो दिन मुझे यहाँ आए हो गए, लड़की दिखाने में टालम टोल कर रहे हैं, पैसे देते वक्त कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो कभी बैंक बाबू का ध्यान, ये सब क्या है? मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ पसा? नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा धोखा नहीं हो सकता। ये सब कैसा तमाशा है? अभी तक मेरे 200 रुपए से ऊपर खर्च हो चुके हैं, दो दिन और आ तो घर लौटने का किराया तक नहीं होगा। ठीक है आज का दिन और देख लेता हूँ, कल फिर कुछ सोचना पड़ेगा।
3: विनोद, ओ विनोद,
2: ये इस तरह शर्मा जी को कौन आवाज दे रहा है? देखो जाकर
4: आप। मैं समझा विनोद को सिनेमा का टिकट नहीं मिला होगा इसलिए घर लौट आए हैं। माफ करना मैंने आपको परेशान किया।
2: सिनेमा का टिकट क्या मतलब? वो दोनों किसी से पैसे लेने गए हैं या सिनेमा देखने? ताल में कुछ खाला है।
3: भाई साहब जरा सुनिए।
4: कहिए आपने मुझे बुलाया?
2: क्या आप विनोद शर्मा को अच्छी तरह जानते हैं?
4: मैं पिछले दो दिन से आपको भी अच्छी तरह जानता हूँ।
2: जी क्या मतलब?
4: मतलब साफ है, आप अपनी शादी के लिए शर्मा जी की लड़की को देखने आए हैं ना।
2: लेकिन आपको कैसे मालूम?
4: और आपने दो दिन में 200-400 रुपए भी लुटा दिए होंगे। और आपको लड़की अभी तक नहीं दिखाई गई होगी।
2: लेकिन ये सब आप कैसे जानते हैं?
4: आप वाकई चक्कर में फंस गए हैं बरखुरदार, और जितनी जल्दी हो यहाँ से खिसक जाइए। यहाँ शादी लायक एक लड़की जरूर है लेकिन देखने में यह लोग हर महीने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं और दो एक तुम्हारी तरह लड़के फंस जाते हैं जिनसे उल्टे सीधे बहाने बनाकर महीने भर का राशन डाल लेते हैं। और जिस दिन लड़के को घर से भगाना हो उस दिन अपनी लड़की को दिखा देते हैं और लड़का ऐसे भागता है।
2: सुनिए, अरे सुनिए भाई साहब,
5: भगवान मैं भी कहाँ फंस गया। शादी के कैसे कैसे सपने देखे थे, सब धूल में मिल गए, ऊपर से 200 रुपए भी। उनके लौटने से पहले ही खिसकना ठीक है, बाहर में जाए 200 रुपए और बाहर में जाए शादी। मैं तो चला।
6: चक्कर शादी का।
7: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
8: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
7: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
8: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
7: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
8: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
7: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
8: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
9: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए।

0: है। यह पद अंशकालिक है। यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
1: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62 112 पे।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि अब इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदलना ब्रिक्स की साझा जिम्मेदारी है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। यदि किसी सदस्य को कोई आपत्ति न हो तो मैं डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करने का प्रस्ताव रखता हूं। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से अडॉप्ट किया जाता है।
0: नई दिल्ली घोषणा पत्र पर आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ दृढ़ और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र सहित वैश्विक शासन संस्थाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। इसमें विकास शील देशों की अधिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात कही गई है। ब्रिक्स देशों ने बहुपक्षवाद को मजबूत करने तथा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। समाचार कक्ष से कल्पना झा।
0: इससे पहले सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक वित्तीय संस्थानों में मतदान और नेतृत्व व्यवस्था को वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाने की जरूरत है।
1: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। इसके पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। उन्होंने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि अध्यक्षता बदलने के बावजूद समूह की संस्थागत गति बनी रही। उन्होंने वैश्विक शासन सुधार के लिए 10 प्रस्ताव तैयार करने और अगले शिखर सम्मेलन तक सुधार की रूपरेखा बनाने का सुझाव दिया।
1: पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बढ़ाई है। हम एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और कंसेंसस से आगे बढ़ते हैं। हम किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले।
0: 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में हो रहे ब्रिक्स बैठक की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव कल पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव पटना उच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इससे पहले वे दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालतों में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार की दीवानी और कुछ प्रकार के फौजदारी मामलों का निपटारा हुआ। साथ ही लोक अदालतों के माध्यम से ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का भी निपटारा किया गया। अररिया में कुल 1819 और शिवहर में 460 मामलों का निष्पादन हुआ। सुपौल में वाहन चालान से जुड़े 280 मामले निष्पादित किए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों और इसके तहत होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभागवार तैयारियों, कार्यक्रमों की रूपरेखा और सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की रूपरेखा पर चर्चा की। बैठक में राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद रहे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा कि सामाजिक विज्ञान शोध का उद्देश्य केवल शोध पत्र प्रकाशित करना नहीं बल्कि समाज को बेहतर समझना और बेहतर नीतिगत फैसलों में योगदान देना होना चाहिए। श्री हसनैन पटना के चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के 3 करोड़ से अधिक कामगारों को वित्तीय सहायता देगी, साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी मदद दी जाएगी। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने इसके लिए सामाजिक सुरक्षा निधि बनाने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निधि बनाने को लेकर विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। कामगारों को दी जाने वाली सहायता की रूपरेखा तय की जा रही है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि अभी भी 15 जिलों के 87 प्रखंडों की 575 ग्राम पंचायतों में 48 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। एक रिपोर्ट।
1: बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 1248 सामुदायिक रसोई केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। 13 राहत शिविरों में भी प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राहत और बचाव कार्यों के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें विभिन्न जिलों में तैनात हैं। इधर केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा और पुनपुन नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे में बक्सर, दीघा घाट, गांधी घाट, हाथीदह, सुल्तानगंज और भागलपुर समेत गंगा की सभी निगरानी केंद्रों पर जलस्तर घटा है। पुनपुन नदी के जलस्तर में श्रीपालपुर में कमी दर्ज की गई है। मनेर में सोन नदी का जलस्तर घटा है, जबकि नदी के जलस्तर में कोइलवर में 1 सेंटीमीटर की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। समाचार कच्छ से राहुल कुमार।
0: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बार फिर बिहार की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। पत्रकारों से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।
2: बिहार के जो बाढ़ आई है, मांग भी की है कि राष्ट्र आपदा जो है के लिए घोषित करें, साथ ही स्पेशल पैकेज जो है बाढ़ पीड़ितों के लिए जो है देना चाहिए, लेकिन बिहार को जो है सौतेला व्यवहार जो है केंद्र की सरकार कर रही है।
0: बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। पटना में आज बैंक के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस राशि का चेक सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बैंक के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह राशि राज्य में आपदा और कठिन परिस्थितियों के दौरान जरूरतमंद लोगों की सहायता में उपयोगी साबित होगी। प्रदेश में मॉनसून के कमजोर पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 44.6 मिलीमीटर बारिश मुजफ्फरपुर के पोछा में रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।
3: राज्य के औरंगाबाद, अररिया, भभुआ, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया, रोहतास, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल एवं पश्चिम चंपारण जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक टिम्पी गर्ग ने आज जहानाबाद और गया सहित विभिन्न स्टेशनों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन पुनर्विकास कार्यों में उच्च गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों के कड़ाई से अनुपालन और निर्धारित समय सीमा में परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। महाप्रबंधक ने यात्री सुविधाओं के विस्तार और रेल परिचालन से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा की। समस्तीपुर जिले के तलसिंह सराय के डैनी चौक के पास एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार एक छात्रा की मौत हो गई। हादसे से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। अररिया जिले के चौकीहाट थाना क्षेत्र के भेवड़ा चौक के पास पुलिस ने एक ट्रक से 1246 लीटर शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी में अपराधियों ने जिला परिषद प्रतिनिधि वैद्यनाथ महतो की गोली मारकर हत्या कर दी। सुबह टहलने के दौरान दो मोटरसाइकिल पर सवार 4 अपराधियों ने उन पर फायरिंग की, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मुंगेर जिले के खासिम बाजार के बेटवन बाजार में एक पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक बंदूक और 14 कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों के शराब पीने की भी पुष्टि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा ही संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर शेखपुरा के जिलाधिकारी शेखर आनंद ने समीक्षा बैठक की। इधर इस अभियान की सफलता को लेकर बांका के बाराहाट में भाजपा की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। समस्तीपुर जिले के ताजपुर में किसानों ने खाद की कमी को लेकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। सिवान के आम्बेडकर भवन में राष्ट्रीय पोषण क्षमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा ने पोषण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से लोगों को संतुलित आहार, बच्चों के पोषण और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार, आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई पर जोर। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव कल पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। और नदियों के जलस्तर में लगातार गिरावट से प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार, 48 लाख लोग अब भी बाढ़ की चपेट में। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 1100 1।

0: दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
4: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
4: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
4: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
9: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
8: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 49 51 51 पे।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय TSU राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। कार्यकारी अभियंता सह प्रबंधक एक पद, प्रबंधक प्लेसमेंट एक पद तथा सहायक कुल सचिव 6 पद। विस्तृत भर्ती अधिसूचना ऑनलाइन आवेदन पोर्टल, पात्रता मानदंडों और संदर्भ की शर्तों की जानकारी के लिए देखिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.tsu.ac.in। मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। यांत्रिक मैकेनिकल 8 पद, इलेक्ट्रिकल 3 पद तथा रासायनिक केमिकल अनुभाग में 15 पद। पदनाम है यांत्रिक और वैद्युत विभागों के लिए सहायक अभियंता और रासायनिक केमिकल अनुभाग के लिए इंजीनियरिंग में स्नातक अभिक्षमता संपन्न उम्मीदवार। इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत विज्ञापन के लिए देख सकते हैं वेबसाइट www.mrpl.co.in। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। अधिकारी विधि विभाग में, वरिष्ठ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल अनुभाग में, उपप्रबंधक इलेक्ट्रिकल तथा सिविल और उपप्रबंधक नीति एवं विनियामक कमिश्निंग रूफटॉप। इसके अतिरिक्त इन पदों को भी भरा जाना है महाप्रबंधक अनुबंध एवं खरीद, उपमहाप्रबंधक विधि, उपप्रबंधक EMD, उपप्रबंधक इंजीनियरिंग सिविल, उपप्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी, लेखा अधिकारी वित्त अधिकारी तथा इंजीनियर कॉरपोरेट प्लानिंग। विस्तृत अधिसूचना के लिए देखिए वेबसाइट www.scci.co.in। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई आमंत्रित कर रहा है सहायक प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी के पद को अनुबंध के आधार पर भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन। रिक्ति 1 है और विस्तृत विज्ञापन, पात्रता मानदंड, नियम और शर्तों तथा अन्य जानकारियों के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.iitbhilai.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी आमंत्रित करती है विमान अनुरक्षण अभियंता के पद को भरने के लिए आवेदन। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार देख सकते हैं आधिकारिक वेबसाइट igrua.gov.in। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता आमंत्रित करता है औषधीय रसायन विज्ञान विभाग में प्राध्यापक पद को भरने के लिए आवेदन। आवश्यक शैक्षिक एवं वांछनीय योग्यता, अनुभव और सामान्य निर्देशों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया देखिए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता की वेबसाइट www.niperkolkata.edu.in।
2: आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही, कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों का को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालिंका का सामना एलिना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के ग्लोबल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
1: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
1: क्या हम सी फेरर इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
0: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
1: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। इस पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
2: I would like to say that the outcome document,
3: मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
2: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
0: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
4: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने दोहराया कि इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सेकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आरेना सबालिंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आरेना ने जेसिका पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोव को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालेंका का सामना एलिना रायबाकिना से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रवजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
8: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
9: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
8: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
9: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
8: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
9: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
9: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
9: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
11: ठक ठक।
12: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
13: अच्छा मिला ही नहीं।
12: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
13: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
12: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
13: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
14: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
15: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
16: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
8: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
16: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
8: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
16: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
8: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
9: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
11: सुनिए सुनिए सुनिए,
17: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
11: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
17: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
11: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
18: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, कृषि जन कल्याण संवाद का हुआ शुभारंभ, राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ भव्य आयोजन, एक प्रखंड एक उत्पाद को लेकर किसानों को किया गया प्रेरित, सड़क हादसे में एक पिकअप चालक की मौके पर हो गई मौत, अलग अलग मामलों में आज कई लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और कई आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज शहर के अम्बेडकर भवन में प्रभारी मंत्री सह बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा किसानों के साथ कृषि जन कल्याण संवाद का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मंत्री महोदय ने स्वरोजगार से रोजगार का वातावरण बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया, किसानों को बिचौलिए से मुक्त कर सीधे बाजार से जोड़ने की बात कही, भविष्य में पीढ़ियों के लिए स्वस्थ कृषि विरासत जरूरी बताते हुए किसानों को जागरूक किया, अतिक्रमण के कारण प्रभावित खेती पर अंकुश लगाने और अतिक्रमण मुक्त कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही। कृषि मंत्री ने किसानों को कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम करते हुए प्राकृतिक खेती को अपनाने और अनुदान का लाभ लेने तथा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण पर बल देते हुए किसानों को जागरूक किया। इस दौरान कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सचिव, उप सचिव इत्यादि उपस्थित रहे। सभी लोगों ने किसानों की समस्याओं और सुझावों को भी सुना, कई का ऑन द स्पॉट निवारण भी किया गया। इस जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में गोपालगंज के सांसद, विधान पार्षद, बिहार सरकार के उप मुख्य सचेतक जनक राम, जिलाधिकारी, बीस सूत्री के उपाध्यक्ष संदीप गिरी और बीस सूत्री के सदस्य प्रमोद पटेल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आज व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित तमाम गणमान्य लोगों ने किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग अपनी फरियाद को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत में आए थे। अलग अलग बेंचों पर अलग अलग मामलों की सुनवाई की गई। पूरे दिन भीड़ भाड़ लगी रही और लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों को सुलझाने के लिए आते रहे। आज कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि को केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि स्वरोजगार और रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम बनाना आवश्यक है। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं बाजार की बेहतर सुविधाओं से जोड़कर कृषि आधारित रोजगार के नए अवसर विकसित किए जाने पर उन्होंने विशेष जोर दिया। उन्होंने किसानों को कहा कि बिचौलियों से मुक्त होकर सीधे बाजार में जाकर अपने फसल को बेचें, सरकार भी इसमें सहायता करेगी, किसान अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करें इसके लिए बाजार तक सीधी पहुंच, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन तथा स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने एक प्रखंड एक उत्पाद को प्रोत्साहित करने और उसे पहचान दिलाने के लिए उपस्थित किसानों से आह्वान किया। कृषि मंत्री ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वस्थ कृषि विरासत तैयार करने पर बल देते हुए प्राकृतिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करते हुए कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं अनुदान का लाभ लेने तथा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपील की। कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि कृषि भूमि का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, अतिक्रमण के कारण खेती प्रभावित होने की स्थिति पर प्रभावी अंकुश लगाया जाएगा तथा कृषि भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कृषि योग्य भूमि का संरक्षण किसानों को और उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए हित में आवश्यक है। आज कई अलग अलग मामलों में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया तो कुछ लोगों को कोर्ट से सजा भी दी गई। एक मामला कुचाई कोर्ट से सामने आया जहां स्मैक जैसे मादक पदार्थ के साथ एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से नगदी और स्मैक बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस के अनुसार महिला स्मैक की बिक्री कर रही थी, इसी दौरान पुलिस ने इसे पकड़ लिया। पूछताछ में जावेद मंसूरी से मादक पदार्थ खरीदने की बात सामने आई है। पुलिस अब इसमें कांड दर्ज कर महिला को हिरासत में लेने के बाद आगे की कार्रवाई कर रही है। आज गोपालगंज के बंजारी थामे बाईपास पर एक सुबह में भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक मिनी पिकअप की ट्रक से भीषण टक्कर हो गई जिसमें पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना जगन्नाथ पंचायत के धोबई टोला गांव के रहने वाले 22 वर्षीय चंदन कुमार शाह थे। बताया जा रहा है कि चंदन ने कुछ ही दिन पहले लव मैरिज शादी की थी। उनकी पत्नी लगभग 5 महीनों की गर्भवती है। घटना बाद से इनके परिवारजनों में कोहराम मचा है। पिता जगदेव शाह का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी बेसुध पड़ गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। चालक मौके से फरार हो गया। ट्रक को कब्जे में लेकर अब जांच पड़ताल करते

अब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर इस पर आगे एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई कर रही है और इसके मादक पदार्थों से जुड़े हुए दूसरे लोगों की भी पहचान की जा रही है। माझा थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी मंजीत कुमार सिंह पिता श्री राम सिंह साकिन श्री रामपुर थाना माझागढ़ को गिरफ्तार किया है। अब इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने 648 लीटर देशी शराब बरामद किया। एक पिकअप गाड़ी को जब्त की गई। इसमें बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बिशंभरपुर के दियारा क्षेत्र में विजयपुर इलाके में छापेमारी की, जहां बबलू शाह के खेत के सामने पक्की सड़क पर पुलिस ने वाहन जांच करते हुए एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप को रोकने का प्रयास किया। वाहन चालक वाहन छोड़कर भागने लगा। पुलिस द्वारा पीछा करने का प्रयास किया गया, परंतु अंधेरे का लाभ उठाकर वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने पिकअप की तलाशी ली तो 648 लीटर देशी शराब मिली, जिसके बाद गाड़ी और शराब को जब्त किया गया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने जलालपुर कुर्म टोला थाना कुचायकोट में वाहन जांच करते हुए एक कार से 286 लीटर से अधिक विदेशी शराब पकड़ी है। इसमें हरियाणा के रहने वाले अब्दुल रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी कार और शराब को जब्त कर इस पर उत्पाद पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। इधर नगर थाना में 2024 में हुए एक मामले में आरोपी को कोर्ट ने 5 वर्ष कैद और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि शराब तस्करी में 2024 में पुलिस ने इस आरोपी पर केस दर्ज किया था। पूजा नर्सरी के पास अवैध शराब की बिक्री करते हुए पुलिस ने इसको पकड़ा था। इसके पास से 27 लीटर से अधिक शराब मिली थी। इसी मामले में पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा था। अब अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया और आरोपी को 5 वर्ष कैद तथा 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई, जिसके बाद आरोपी को आज पुलिस ने जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि जिस आरोपी को सजा हुई उसकी पहचान गौतम कुमार पिता राम नारायण चौधरी साकिन सरया थाना नगर के रूप में की गई है। आरोपी अगर 1 लाख रुपए का जुर्माना नहीं भरता है तो इसे 1 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसमें लोक अभियोजक अवधेश प्रसाद मणि की महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस के द्वारा बताई गई है। मुचका गांव थाना क्षेत्र के एक डेरवा में एक युवती की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती का शव उसके ही कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया। एफएसएल की टीम के माध्यम से भी इसकी जांच पड़ताल की गई। बताया जा रहा है कि मृत महिला राम नरेश प्रसाद की पुत्री थी। पिता लकवा के मरीज हैं। पिता का कहना है कि वे कुछ ही महीनों में रिटायर होने वाले हैं और वे चाहते थे कि वे लकवा के मरीज हैं अपने बेटी की शादी धूमधाम से कर दें, इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बेटी की शादी तय कर दी थी। पिता का कहना है कि बेटी पढ़ना चाहती थी, वह शादी नहीं करना चाहती थी और इसी वजह से नाराज थी। शायद उन्हें लगता है कि इसी वजह से उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। घटना के बाद से युवती के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने महुआ मुर्गी फार्म के पास छापेमारी करते हुए 3 लोगों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और पुलिस ने यहां छापेमारी की, जहां 3 लोगों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी प्रिंस उर्फ रेहान जो कुचायकोट के महुआ के ही मोहम्मद इस्लाम का पुत्र है। दूसरा आसरानी पिता सोबराती मियां, यह भी महुआ का ही निवासी है। और सुग्रीव कुमार पिता सुरेश राम, यह मकसूदपुर थाना उचका गांव का रहने वाला है। तीनों को आज स्मैक के साथ गिरफ्तार कर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करते हुए तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर थावे के पिठौरी गांव के रहने वाले एक आरोपी को कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में 2.5 साल की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 5 की अदालत ने सुनवाई करते हुए पिठौरी गांव के अंकित माझी को 2.5 साल कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। 3 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और सजा का ऐलान किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार और जेल भेज दिया। फुलवरिया प्रखंड के एक किसान भवन को 24 घंटों के अंदर अवैध कब्जे से मुक्त कराने का कृषि मंत्री ने निर्देश दिया, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट है और इसको अवैध कब्जे से

0: मुक्त कराने की दिशा में आज प्रयास तो शुरू कर दिया गया। कृषि मंत्री विजय सिन्हा पालगंज आए थे। इस दौरान बैठक में 20 सूत्री के सदस्यों ने इस किसान भवन के अवैध कब्जे की बात कही, जिसके बाद उन्होंने तुरंत जिला प्रशासन को 24 घंटों के अंदर संज्ञान लेते हुए इसे खाली कराने का निर्देश दिया। इधर गन्ना यांत्रिकरण योजना 2026-27 को लेकर भारत शुगर मिल सिधवलिया और विष्णु शुगर मिल गोपालगंज में विशेष गन्ना यांत्रिकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सिवान, छपरा और पूर्वी चंपारण आरक्षित क्षेत्र के स्वीकृति पत्र प्राप्त करने वाले सैकड़ों किसानों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। साथ ही विभिन्न कृषि यंत्र निर्माता एवं अपने अधिकृत विक्रेता आधुनिक यंत्र के साथ खरीदारी की। कार्यक्रम में दोनों चीनी मिल के अधिकारी, सहायक निदेशक गोपालगंज के साथ ही सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी और कर्मचारी भाग लिए। इस दौरान जिन किसानों का कृषि यंत्र का परमिट प्राप्त है, उसका वितरण विष्णु शुगर मिल लिमिटेड के उपाध्यक्ष सुरेंद्र उपाध्याय और भारत शुगर मिल सिधवलिया के कार्यपालक उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी तथा सहायक निदेशक गोपालगंज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया और मेला में उपस्थित किसानों को कृषि यंत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। जिले के विकास को नई गति और नई दिशा देने के उद्देश्य से प्रभारी मंत्री सह कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने समाहरणालय सभागार में जिले के प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद कर विभिन्न विषयों पर व्यापक मंथन किया। संवाद में समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिकों, लोक सेवकों, जन सेवकों, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़े व्यक्तियों तथा व्यापारिक प्रतिनिधियों ने जिले के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रबुद्ध वर्ग समाज का मार्गदर्शक और दिशा देने वाला वर्ग है। उनके अनुभव, ज्ञान और सामाजिक सरोकार से प्राप्त सुझाव विकास की योजनाओं को अधिक जनोपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक प्रयासों के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी से ही समग्र एवं स्थायी विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा। संवाद के दौरान प्राकृतिक और जैविक कृषि, गुणवत्तापूर्ण खान पान और स्वस्थ जीवन शैली को लेकर विशेष चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अनावश्यक प्रयोगों को नियंत्रित करते हुए प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है और इससे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के साथ गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पाद और स्वस्थ समाज के निर्माण में मदद मिलेगी। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को प्रखंडवार मृदा नमूनों की जांच कराने का निर्देश दिया, ताकि मिट्टी की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप ही उर्वरक एवं कीटनाशकों का उपयोग सुनिश्चित हो सके। प्रभारी मंत्री ने कहा कि विकास का अर्थ केवल सड़क, भवन और अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण नहीं, बल्कि स्वस्थ, संस्कारित, नैतिक और जिम्मेदार समाज का निर्माण भी है। उन्होंने भारतीय मूल भावनाओं, परंपरागत जीवन शैली, सामाजिक समरसता एवं नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने प्रबुद्ध जनों से समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सामाजिक एवं नैतिक संकल्प को मजबूत करने और सकारात्मक बदलाव के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। आज बसेरा 2 अभियान के तहत 72 भूमिहीन परिवारों को बासगीत का पर्चा दिया गया। इस दौरान विजयपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार ने लाभुकों के बीच पर्चा का वितरण किया। पर्चा मिलने के बाद गरीब परिवारों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। मंत्री ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनके अधिकार का लाभ दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। बासगीत पर्चा मिलने से आवास निर्माण के लिए जमीन का अधिकार भी गरीबों को मिल गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS गोपालगंज के द्वारा विजयपुर परियोजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 99 पर पोषण माह के परिपेक्ष में गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दीप प्रज्वलित कर सभी को लाभान्वित किया गया। इस दौरान रंजना कुमारी द्वारा पोषण से संबंधित तथा गर्भावस्था के दौरान किन किन बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिए, उसे गर्भवती एवं उनकी सास को तथा उपस्थित सभी लाभुकों को अवगत कराया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कृषि जन कल्याण संवाद का हुआ शुभारंभ, राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ भव्य आयोजन, एक प्रखंड एक उत्पाद को लेकर किसानों को किया गया प्रेरित, सड़क हादसे में एक पिकअप चालक की मौके पर हो गई मौत, अलग अलग मामलों में आज कई लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और कई आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
1: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: रियाज रेट्रो।
10: हेलो हेलो, हैप्पी होली। अपने मन के अंदर की होलिका का दहन कीजिए, प्रहलाद की आस्था को विराजमान कीजिए, रंगों को अपनी आत्मा में विलीन होने दीजिए, बसंत की मधोशी में खुद को खोने दीजिए। आज के इस एपिसोड का होली के साथ कोई लेना देना नहीं है, पर त्योहारों में जो अपनों की याद आती है ना, उसके साथ जुड़ी है आज की बात, यानी कि इस अगले गाने की इन पंक्तियों का पूरा संदर्भ है। आई होली आई, सब रंग लाई, बिन तेरे होली भी न भाए, हाय भर पिचकारी सखियों ने मारी, भीगी मोरी सारी, हाय हाय, तन बदन मोरा कांपे थर थर। मैं आपके साथ रिया, सब गिले शिकवे भूलकर दुश्मन को भी गले लगाने का पर्व है ये, दोस्ती का उत्सव है ये। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और इस स्पेशल ट्रीट के बाद यानी गाइड का ये गाना पूरा का पूरा विदाउट एनी एडिट्स, इस खास म्यूजिकल गुजिया के बाद आते हैं वापस उस भावना पर कि बिन तेरे होली भी न भाए।

0: मेस्मराइजिंग, चाहे वो लता जी की आवाज हो या वहीदा जी का डांस, मतलब प्रतिभा की होली हो मानो। फिल्म गाइड संगीत एसडी बोल शैलेंद्र, हर एक कलाकार इस गीत में जैसा हम कहते हैं आजकल अपने ए गेम पर।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
8: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9939365923।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
12: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
12: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
14: रियाज रेट्रो।
0: मैं रिया, और हाल ही में मेरे मन में एक ख्याल आया, मिसिंग समवन को क्या कहते हैं हिंदी में? एक मिनट, याद आना, वेट, आई नो दैट्स व्हाट यू थॉट ऑफ। याद आना इज रिमेम्बरिंग समबडी। याद आना वो फिनोमिनन है कि हमने साथ कुछ पल बिताए थे, वो पल बार बार जहन में वापस आते हैं, रिवाइंड होकर, एक फिल्म के रिप्ले की तरह। दैट इज रिमेम्बरिंग समवन, तुम्हारी याद आ रही है। बट मिसिंग समवन, वो बीते लम्हों के बारे में नहीं जितना आने वाले पलों के बारे में है, कि आओ लेट्स स्पेंड मोर टाइम, लेट्स टॉक सम मोर, लेट्स मेक मोर मेमोरीज। मन है फिर से साथ बैठने का, फिर फिर एक कॉफी पीने का, एक फिल्म देखकर उस पर बहस करने का, क्रिकेट मैच पर एक साथ नाखून चबाने का। यानी मिसिंग यू में आगे की बात है, आने वाले जज्बात हैं, कुछ अधूरा, कुछ बाकी रह गया, उसको पूरा करने की ख्वाहिश है। याद आ रही है कि मुकाबिल मिसिंग यू में अभी भी बाकी उम्मीद है। मैं आपके साथ रिया। मिसिंग यू को हिंदी में क्या कहते हैं यार?

0: हसरत जयपुरी, एसडी बर्मन, मोहम्मद रफी फुल मस्ती से गाते हुए देवानंद के लिए। आई थिंक वो देव साहब के हेड नॉट को भी अपनी आवाज में समेट लेते थे समहाउ, है ना। तू कहा ये बता इज वन ऑफ द फ्यू सॉन्ग्स जो जेन्युइनली मिसिंग यू के बारे में है।
1: रियाज रेट्रो।
0: मैं रिया और मैं सच कह रही हूँ, याद आने पर अगर एपिसोड करने जाऊं तो 10 तो क्या 10 दर्जन गीत मिल जाएंगे, पर अगर मैं रिमेम्बरिंग यू और मिसिंग यू में फर्क करूं, एक को माजी और दूसरे को मुस्तकबिल का एहसास मानूं, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि गाने कितने कम पड़ जाते हैं। एक खुशी है, एक हल्कापन है मिसिंग यू में, वो दर्द मीठा है, उसके अंदर ही उसके मिटने की गुंजाइश अभी बाकी है। बस एक मुलाकात की ही तो बात है ना, एक संजोग, कोई हसीन सा इत्तफाक और फिर बन जाएंगे ना कुछ नए पल। उम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। आई मिस यू इस फ्रेज में एक मुस्कान है, याद आ रही है, तुम्हारा इंतजार है और तुमसे मिलना है। इन तीनों सेंटिमेंट्स को मानो जोड़ने वाला ब्रिज हो, और इस फीलिंग की सटीक हिंदी या उर्दू नहीं समझ में आ रही मुझे। ओफो, दिस इज ट्रबलिंग मी नाउ।

0: एब्सोल्युटली सिंटिलेटिंग स्मिता पाटिल एक 1940s के फिल्म स्टार की भूमिका निभाती हुई। फिल्म का नाम भी वही, श्याम बेनेगल की भूमिका। आवाज अनयूजुअल और अनसुनी, प्रीति सागर। वनराज भाटिया का संगीत, मजरू साहब के बोल, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, यानी आई मिस यू। और उससे पहले आपने सुना आजारे, नूरी का टाइटल ट्रैक, जानिसार अख्तर साहब और खयाम साहब, लता जी और नितिन मुकेश की आवाजें। स्वीट सॉन्ग्स ऑफ लॉन्गिंग, दोनों गीतों में ही वो बात जिसकी मैं जिक्र कर रही थी कि किसी को मिस करने में एक मिठास है जो किसी को याद करने में शायद ना हो।
1: प्रसाद क्लिनिक,
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
6: रियाज रेट्रो।
0: मैं रिया, ट्विटर हैंडल मेरा @MissRiaMukherjee, MSRIYAMUKHERJEE। अगर आपको ये कहने का मन कर रहा है कि सॉरी रिया, पर तुम सच में अब सटक गई हो, ये क्या बाल की खाल निकाल रही हो, क्या फर्क है इन दोनों बातों में? पर सोचकर देखिए ना, एक में भार पूरी तरह आप पर है। अगर आप किसी को ये मैसेज करो कि तुम्हारी याद आ रही है, तो वो कह सकता है ना, कर लो याद, फिर याददाश्त तो तुम्हारी ठीक ठाक ही है। पर जब आप किसी को कहो आई एम मिसिंग यू, तब उस पर आ जाती है ना बात कि वो अब इसके बारे में कुछ करे, मिलने के प्लान्स बनाए, आने का वादा करे, वक्त निकाले। देयर हैज टू बी सम एक्शन इन रिस्पॉन्स टू दिस रिएक्शन। बड़ी साइंटिफिक बात है कि नहीं? फिर किसी को याद करना बंद कमरे की तरह है, धीमी रोशनी में गजल सुनने की तरह है, एल्बम से धूल झाड़कर पुरानी तस्वीरों को देखने की तरह है, उम्र की लकीरों की तरह है। मिस करना खुले आसमान जैसा है, फ्लाइट बुक करने जैसा है, बैग को कंधे पर उठाए अचानक घर से निकलने जैसा है, जिद की तरह है, जादू की तरह है, बेचैन कदमों की तरह है।

0: क्विंटेसेंशियल किशोरदा फिल्म पेइंग गेस्ट संगीत एसडी बोल मजरू, उससे पहले लता जी विद आजा आई बहार फिल्म राजकुमार, अनमिस्टेकेबली अशंकर जयकिशन शैलेंद्र क्रिएशन।
1: रियाज रेट्रो,
0: हल्के फुल्के गीत दोनों और मिसिंग यू में भी ये हल्कापन है जो याद आ रही है मैं नहीं है। वो हल्कापन आता है उम्मीद से, which is what I said right at the beginning of the episode. When we miss somebody, we are still hoping. पर जब हम याद करते हैं तब तक शायद हम उम्मीद का दामन छोड़ चुके हैं। याद आ रही है मुझे एक इनवर्ड जर्नी की तरह लगती है। मैं तुम्हें खींच रही हूँ अपने मन में, अपने दिल में, अपने अंदर समा रही हूँ तुम्हारे वजूद को, क्योंकि तुम तो हो नहीं। और मिस यू एक आउटवर्ड जर्नी लगती है, कुछ है जो मुझे बाहर ले जा रहा है तुम्हारी तरफ, खींच रहा है तुम्हारे अंदर से कुछ मुझे अपनी ओर। इट्स एन इरेसिस्टिबल टग, अ पुल। याद हमें उनकी आती है जो नहीं है, मिस हम उन्हें करते हैं जो हैं। कहीं दूर थोड़े से ओझल, अभी बादलों से ढके, पर वो जो हैं, बस एक सूत की दूरी पर। पर ऐसा भी होता है ना कभी कि हमें पता हो अगला अब नहीं है। That terrible sense of emptiness when you know that somebody is gone, as final as death. हो सकता है वो आपकी आंखों के सामने ही हो, आपके घर, आपकी जिंदगी, आपके बिस्तर में हो, पर फिर भी आपको पता होता है कि असल में वो नहीं है, वो जा चुका है। उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में एक एब्सेंस है। मौजूद है आप दोनों के बीच में अगर कुछ, तो वो सिर्फ उनकी गैर मौजूदगी है। और तब आती है याद, याद उसकी जो शायद बगल में ही हो, साथ वाले तकिए पर ही जिसका सर हो, जो नींद में ज्यादा पास लगे, क्योंकि जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, उन आंखों में मीलों की दूरी नजर आती है। हाँ, तब याद आती है।

0: मैं जब जब किसी एपिसोड में ज्यादा किशोरदा के गीत बजाती हूँ तो मुझे दो फीलिंग्स आती हैं एक ही साथ। एक तो हैशटैग घर वापसी वाली कि कितना भी एक्सप्लोर कर लो, कितनी भी रेंज बढ़ा लो, कहीं भी भटक जाओ यहाँ से वहाँ रेट्रो की नगीनों की खोज में, घर आखिर घर होता है, किशोरदा घर है। और दूसरी फीलिंग आती है चीटिंग वाली, डाइट के बीच में चीट डे वाली, क्लासेस बंक करके पिक्चर देखने वाली कि यार ठीक है रेट्रो के स्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल डाइट से थोड़ा हटकर किशोरदा की बिंजिंग कर लें थोड़ी।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।
3: रियाज रेट्रो।
0: स्वामी फिल्म से आपने सुना यादों में वो, संगीत राजेश रोशन, बोल अमित खन्ना, और उससे पहले किशोरदा के साथ लता जी। ये इवोकेटिव ड्यूएट तो मैं कई बार चला चुकी हूँ पर फिर भी हर बार झंझोर कर ही रख देता है। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा ना आई, बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। फिल्म भी वही, थोड़ी सी बेवफाई, मौसिकी खयाम, शायरी गुलजार। मैं आपके साथ रिया, और अगर आपको भी वो फ्रेज या शब्द समझ में आए जो ठीक तरीके से हिंदी या उर्दू में मिसिंग यू को बयां करें बिना याद आने की बात किए, तो मुझे पक्का ट्वीट करना, @MissRiaMukherjee मेरा हैंडल है। वो कौन सा टपोरी टाइप गाना था सलमान खान का, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। डोंट वरी, नहीं चलाने वाली, स्टॉप पैनिकिंग। बट वुडंट इट बी वंडरफुल कि हम जिनको मिस करते हों उनकी याद आने से पहले वो खुद आ जाएं? कितना अच्छा होता अगर ये हो पाता, अलादीन के चिराग के जिन की तरह, या हैरी पॉटर के हाउस एल्व्स की तरह, या फिर सिंड्रेला की फेरी गॉड मदर जैसे। बस याद करने की देर है और जादू हाजिर है। किसी का आना कभी जादू से कम थोड़ी लगता है, जब उम्मीद छूट चुकी हो, जब भरोसा खत्म सा हो गया हो, जब लगने लगा हो कि इंतजार भी बेकार है, पर फिर भी अगर कैफी साहब के अल्फाज को थोड़ा तोड़ने मरोड़ने की हिमाकत करूं, राख के ढेर में तब भी एक शोला या चिंगारी बाकी हो, और उस आखिरी चिंगारी के बुझने से पहले अगर अचानक वो आ जाए जिसकी याद आती थी, कैसा हो फिर? जादू से कोई कम है क्या वो लम्हा?

See, this is what I mean. किशोरदा गा तो रहे हैं याद आने के बारे में, पर मिली तो सामने वाले घर में ही रहती है ना, कल ही मुलाकात होगी। He is just missing her actually. और गीत में जादू इसी बात से आता है कि बस अभी मुलाकात होगी, पर सच में मैजिक है ना ये गाना। SD बर्मन, योगेश, उफ, just timeless. आपके साथ इतनी देर थी मैं रिया, अगले हफ्ते तक मुझे याद मत करना पर मिस जरूर करना। कभी अगर रियाज रेट्रो खत्म हो जाए ना, याद तब के लिए बचा कर रखना विथ ऑल द याद आने वाले सैड सॉन्ग्स। पर उन सब के लिए जो आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं, जिनके साथ डोर मजबूत है, जो ओझल भी होते हैं तो बस थोड़ी सी देर के लिए ही, ऐसे रिश्तों का जब तक साथ है और दूरी भी बस दो पल चंद लम्हों की है, तब तक उस याद में उम्मीद की मीठी चटनी, एंटिसिपेशन का चाट मसाला और आने वाली खुशी की सौंठ मिलाकर खाना, उसी को कहते हैं किसी को मिस करना। घर की बनी चाट खाइए, गुलाल से अपनी अंतरात्मा तक रंग जाइए, खूब अच्छे से, खूब प्यार से होली मनाइए। डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव।

0: यू आर लिसनिंग टू रियाज रेट्रो।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

आशिक बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन में बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल देर रात एलिना रिबाकिना और आर्याना सबालेंका के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। The BRICS nations adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi today. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. It highlighted the need to tackle hunger and poverty and strengthen the global response to climate change. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
1: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
2: The 18th BRICS summit kicked off this afternoon with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of member countries at Bharat Mandapam. In his opening remarks, Prime Minister Modi proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. He emphasized that the gap between decisions and their outcomes must be bridged through partnership and collective action.
1: ग्लोबल साउथ आज वैश्विक संकटों की फ्रंट रो में है, लेकिन डिसीजन मेकिंग की बैक रो में है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
2: The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. The Prime Minister also proposed to establish a seafarers emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times. After the conclusion of the session on the first day, Prime Minister Modi and the BRICS leaders planted saplings at the venue outside the lawns of Bharat Mandapam and posed for a family photo. They also visited the India Innovates exhibition. Prime Minister Narendra Modi and President of China Xi Jinping today reaffirmed that India and China should take a strategic and long-term perspective of their ties and differences should not become disputes. During their bilateral meeting on the sidelines of BRICS summit, the two leaders welcomed the steady progress in India-China bilateral relations since their last meeting in Tianjin in August last year. Prime Minister Modi highlighted that both sides must be guided by three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. He emphasized that peace and tranquility in the border areas remains an essential basis for the continued development of bilateral relations. The two leaders expressed commitment to a fair, reasonable, and mutually acceptable resolution of the boundary question proceeding from the political perspective of their overall bilateral relations and the long-term interests of the two peoples. External Affairs Ministry said in a statement that the two leaders took note of the progress in people-to-people ties and underscored the need to further promote cultural exchanges, business linkages, and greater mobility between the two countries. A special cultural performance, Navarasa, the universe of shared emotions, was presented during the BRICS Leaders Summit Gala dinner hosted by the Prime Minister today at Bharat Mandapam in New Delhi. The cultural event featured the BRICS Symphony, One Rhythm, Many Cultures, bringing together musicians from BRICS members and partner countries in a unique collaborative musical performance. And in US Open tennis, defending champion Arina Sabalenka will take on Elena Rybakina in the women's singles final tonight. And that is the end of this news bulletin.
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: अपन ख्याल रखिया।
1: जा, जा, जा, जा, अकेले खुश रहिया।
2: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: हाँ सोना।
1: हाँ कौन?
0: आवन तनी कोना।
1: अरे कौन बोल रहे हो?
0: अरे हम तार पूछू बेबी, नंबर भी डिलीट कर दियो क्या?
1: अरे नहीं नहीं,
0: आवन डीजे बजाता बस तार आवाज सुनाते नहीं के।
1: बस 2 मिनट रुक जाना।
0: हेलो।
1: हाँ हेलो।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: चक्कर में 20 गो अगुआ फेर दे नहीं देता था।
1: बुलाती है मगर जाने का नहीं।
2: तू जो है आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो। नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का। तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
5: हेलो
6: जी, नमस्ते दानिश सुंदर।
5: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। धूप तो निकला हुआ है, अभी धूप कल छाओ।
6: गाना सुन रहे हैं तो हम रोटी लगा के भोजपुरी सॉन्ग है। अच्छा गाना है मैम, लगे भोजपुरी है ना। बोले कि तू रूपवा के की तो हम हाई रोटी लगा के।
5: अच्छा
6: जी, ये गाना है भोजपुरी है मैम
5: जी।
6: बढ़िया गाना है, बढ़िया ही गाना है, खराब खराब नहीं है
5: जी। हाँ, ये गाना जो
6: आप बजा के ठीक कीजिए तो फरमाइश कीजिए।
5: नहीं नहीं, गाना सुने हैं, गाना तो बहुत अच्छा
6: है जी। कौन है
5: जी? तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका
6: जी। जी नमस्ते।
5: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM
6: जी।

0: हेलो
1: सर मैम,
0: नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 एफएम में। बता दीजिए। हेलो हाँ जी, गाना बता दीजिए।
1: ये मेहंदी का बूटे रंग अनोखे नहीं है गाना, तो हमको तुमसे प्यार है उसी में क्या है कि क्या पता का गाना फिल्म में क्या है।
0: ये मेहंदी के बूटे इनके रंग अनोखे, यही वाला
1: जी मैम।
0: अच्छा जी, वैसे अपना नाम बता दीजिए।
1: मैम सुनीता देवी हो जयपुर से।
0: अच्छा जी, तो आप कैसी हैं? ठीक है ना
1: जी मैम? ठीक है, आप कैसी हैं?
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ। बहुत देर से कॉल की है
1: मैम, पूजा करते करते करते करते समय हो गया। अब तो देखे कि सोचेगा कि टाइम तो माने पूजा करके खाना खा रहे थे, तो अभी देखे कि अभी सोचेगा कि ट्राई करे, अगर लग जाए तो बात हो जाएगा, नहीं तो ठीक है मैम
0: जी। और गाना जो बताई वो डेडिकेट भी करना चाहती हूँ
1: जी मैम आपको, भारती मैम को, सनी भैया को। और सनी मैम जो मैम है, सनी की क्या नाम है पहले थी?
0: सोनी।
1: हाँ सोनी, अब नहीं आएंगी मैम?
0: अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो हमारा
1: ही सही। ये तो बात है, उनका मन का बात वही न जाने, मगर बहुत अच्छा उनका आवाज था। आप लोग का भी आवाज बहुत अच्छा है, मगर बहुत माने अच्छे से बात करती थी। अब आप लोग भी बात अच्छे से करते हैं, लोग माने गुस्साइएगा ना ही,
0: मतलब हम कहा लग पाएंगे। बात आप सही बोल रही हैं।
1: ऐसा ही बात है, तब आप सब बोलिए, घर परिवार सब कोई ठीक है ना मैम?
0: जी सब कोई ठीक है।
1: चलिए मेरा भी ठीक है।
0: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका
1: मैम? ओ वाला तो दोनों गाना हम सुनते ही नहीं किए। गाना तो सुनते हैं छोटा वाला मोबाइल से, दिन भर सुनते हैं, 9 बजे रात को भी सुनते हैं, 9 बजे रात तक
0: जी।
1: नहीं साढ़े 9 बजे सोनू भैया आते हैं, क्या पता वो आते हैं कि रिकॉर्डिंग बजाया जाता है, मगर ये नहीं पता है कि मैंने उड़ा को बोलते हैं कि मैं मैसेज करने के लिए, तो मैंने मैसेज लू करते हैं तो गाना बजता है
0: जी। तो आप उसने फरमाइश की थी या फिर हेलो माय चॉइस की थी?
1: नहीं आपसे तो की थी।
0: तो आप सुनती हैं ना?
1: जी मैम सुनते हैं
0: जी।
1: हो सकता है मैम कि मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता है ना तो चार्ज में लगा देते हैं, तो हो सकता है बजा दी होंगी
0: जी। मैं गाना सबका बजाती हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो गाना तो सबका बजेगा ही
1: जी मैम। मेरा नहीं ही गलती होगा।
0: चलिए कोई बात नहीं, तो सुनीता जी प्ले करते हैं गाना आपका जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंकिंग 90.4 एफएम।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो,
3: नमस्कार मैडम जी।
2: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
3: जय किशोर बोल रहा हूँ, परसों से बात हुआ था। हाँ जी, आपको बनाया था हमारा मनपसंद गाना, कल बहुत अच्छा लगा था।
2: अच्छा जी, सुने अपना गाना?
3: हाँ जी सुने थे, बहुत बढ़िया आपने सुना। एक शिकायत है मैडम, प्रचार बहुत लंबा कर दिए आप लोग, थोड़ा कम करिए
2: जी।
3: प्रचार थोड़ा कम करिए, ज्यादा लंबा हो रहा है।
2: अच्छा,
3: आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है, लेकिन आप हेलो फरमाइश भी चालू करिए।
2: जी जी, बहुत जल्द होगी चालू।
3: गाना सुना दीजिए।
2: मैं गाना आपको सुनाऊंगी, बता दीजिए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं।
3: हम बोल रहे हैं राजस्थान।
2: और आपका नाम?
3: जय किशोर।
2: अच्छा जय किशोर, तो क्या है आज की फरमाइश आपकी?
3: दीदी,

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: मुझे किस सुनना है?
0: जी सुनाएंगे, आप अपना नाम बता दीजिए पहले।
1: मेरा नाम उमा शंकर सिंह है।
0: और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं बोल रहा हूँ उत्तराखंड से।
0: अच्छा जी, तो क्या है आज की फरमाइश?
1: फरमाइश है ये पर्दा हटा दो, ये मुखड़ा दिखा दो।
0: और ये डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
1: हाँ, आप सभी लोगों को डेडिकेट रहेगा, जितने लोग सुन रहे हैं सभी लोगों को डेडिकेट रहेगा, और रानी हरप्पा को भी डेडिकेट रहेगा। बाकी हमारे उत्तम सोनी है, दिलीप भाई है, कामरान भाई हैं, कामरान भाई सब सुन ले जाए।
0: चलिए तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ठीक है, ओके।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911।

0: 9 से 11। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम। हम तो बिल्कुल बढ़िया वानी, आपन बताएं। तो क्या होता?
2: क्या होता?
1: क्या हुई रोग से बात होता?
2: हम इंतजार करती बात कॉली आज जाए खाना न बनाए।
1: चलिए, कार्यक्रम से बहुत लगाव हो गया ना
2: जी मैडम जी। टाइम हो जाला तो सोचे नहीं, पहले बतिया ली तब एक कमा कर दे।
1: चलिए ठीक है, कुछ नहीं, ऐसे नाम बता
2: दिया। बात कर दे से आदत हो गई है, बाकी काम 10 मिनट बाद हुई था कि फोन पहले।
1: हाँ बिल्कुल, चलिए
2: ऐसे भी आज थोड़ी बतिया रही हमको, कम 2012 से बात मैंने बोला रही है
1: ना वैसे बताइए तो रोग वाले से बात करके बड़ा अच्छा लगे हमके भी।
2: जब बात हो जाए वाला से तो मानी
1: नाम बता दिया अपन।
2: रेशमा बोलते हैं पठान पट्टी से।
1: अच्छा, तो घर पर नहीं बताई, घर परिवार में सब कुछ ठीक था?
2: हाँ मैडम जी, सब कुछ ठीक। अपन कहें
1: जी जी जी सब ठीक
2: है। आज के फरमाइश ये बा, हिंदी गाना सुनने के बाद ज्यादा तो याद नहीं है, बता देते नहीं अब हिंदी गाना नहीं के चटाना भी नहीं आता बताना भी नहीं आता।
1: कौन सा?
2: चटाना भी नहीं आता बताना भी नहीं आता, बा गाना।
1: हाँ
2: हाँ बाजा दादा हमारा याद बता।
1: चलिए कोनो बात नहीं, ये बजा दे मगर ना मिले तो कोनो और बजा सकते।
2: हाँ ना
1: मिलते सुनवाई के भी चाहते नहीं।
2: हाँ तो रौरा सुने मैम लोग बोले वाली सुनी में साथी में सब कुछ जितना लोग सुनते सब कुछ सुनबे करे।
1: चलिए तो फिर प्ले करते हैं और गाना।
2: जी मैडम जी बजा दी
1: जी, सुनते रहे सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो।
1: हाँ जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजी 90.4 FM में। जी, नाम बता दीजिए अपना।
0: हमारा नाम है बधु नारायण मुनि।
1: और कहाँ से?
0: ग्राम भलू से, जिला सिवान, जामो बाजार।
1: अच्छा, तो कैसन बनी हुआ?
0: ठीक बनी। जय भवानी।
1: जय भवानी। तो बता दीजिए आज की फरमाइश।
0: आज के फरमाइश बा तोरा मन दर्पण कहलाए, काजल फिल्म का गाना है।
1: जी,
0: ये काजल फिल्म का गाना है, तोरा मन दर्पण कहलाए, ये भजन है।
1: अच्छा,
0: ये भजन है और इसको रवि साहब ने संगीत दिया है, लिखा है साहिल उद्यानी साहब।
1: ठीक है, और गाना सुनाएंगे?
0: गाना तो सुनवाएंगे सब आपको भी और रेडियो रेंजिंग के पूरे परिवार को भी और पूरे सिवान, जहाँ तक ये हमारी आवाज जा रही है वहाँ तक सभी जितने श्रोता है सबको।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है जी।
1: जी,
0: कब तक सुनने को मिलेगा?
1: आज नहीं तो कल बजे।
0: ठीक है जी।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: The phone ring, they watch the head, go get the hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: नमस्ते जी, बहुत बहुत रेडियो 90.4 FM।
6: कैसी है मैम?
5: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप? और आपका नाम? कृति जी। तो कैसी हैं आप?
6: बताइए भारती मैम कैसी है?
5: भारती मैम भी अच्छी हैं।
6: आप नहीं आई हैं?
5: नहीं,
6: इनका तो नहीं चल रहा है तो ऐसा नहीं लग रहा है।
5: जी जी, वो भी बहुत जल्द चलेगा।
6: और सब बताइए?
5: और सब तो बढ़िया है, आप बताइए। खाना हो गया आपका? जी। तो क्या है आज की
6: फरमाइश?
5: कौन सा
6: बता रहे हो?
5: सुनिए हमारा देश तोड़ा मारा हाथ धोके कहीं से।

0: गाना
1: तो बहुत अच्छा है जी। वेलकम। और ये गाना आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहती हैं?
0: जी आपको
1: ओके तृप्ति जी, तो फिर मैं प्ले करती हूँ गाना आपका।
0: जी थैंक यू मैम।
1: जी वेलकम। सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: ओके okay.

0: हेलो जी, नमस्कार मैडम जी।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदन जिला गुना मध्य प्रदेश से।
1: जी क्या हाल चाल है जी आपका?
0: बस मैडम जी, दुकान पर बैठे सिलाई कर रहे हैं।
1: अच्छा, बारिश वरिश हो रहा है?
0: बारिश मारिश ने हो रहा है, पानी गया चला गया अब तो वापस।
1: अच्छा
0: जी,
1: बढ़िया। तो खाना वाना हो गया है आपका?
0: जी हो गया, दाल बाटी बनाई थी आज। आइए भोजन कर लीजिए।
1: जी जी बिल्कुल आएंगे।
0: जी कौन, भारती जी बोल रही है क्या?
1: नहीं।
0: सोनी जी?
1: नहीं।
0: मनोरमा जी?
1: हाँ जी।
0: जी तो मैडम जी, मेरी पिक्चर का नाम तो पता नहीं, लेकिन अल्ताफ राजा का गाना है, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए।
1: थोड़े इंतजार का मजा लीजिए,
0: अल्ताफ राजा ने गाया है ये। इसके और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अल्ताफ राजा का है ये।
1: जी जी बिल्कुल।
0: और ये गाना आप तीनों मैडमों को डेडिकेट रहेगा, गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझा जी है, जितेन धाकड़ जी है, और जितने भी सभी रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं उनको ये गाना डेडिकेट रहेगा सुनील साहू जी की ओर से।
1: ओके जी, तो फिर गाना प्ले करते हैं आपका।
0: कब बजेगा ये?
1: शाम को।
0: जी मैडम धन्यवाद।
1: ओके जी, तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में। नमस्कार जी, सब ठीक बात बताएं। गाना दो लाइन बता देती तो सही रहे। एक बार गाना क्योंकि सुनाई के लिए क्या आता है।
6: गाना तो बहुत लोग सुनने वाला सब सुनने नाम आज ऐसे भी लेकर
5: अपना नाम बता
6: सुनने वाला पर गाना सुन हमारा नाम पर मतलब कुमार
5: और कहाँ से
6: कला मठ में देख सकता अभी तो हम तो अभी तो संजाम में है।
5: मौसम कैसा बने के
6: मौसम है ना, बारिश के हल्का हल्का भय हुआ होने गोपालगंज में।
5: गोपालगंज में भी ठीक था, कभी धूप होता कभी छाँव होता।
6: ऐसा ही बार धूप निकले तो अच्छा होता, बारिश तो अभी नहीं सही गया।
5: चलिए तो फिर
6: आज बाजी काल
5: आज ना तो कल बाजी रही दोनों दिन में जी। तो प्ले करते नहीं सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजर 90.4 एफएम में।
0: महाराष्ट्र हाँ गाना सुनने का
1: बता दीजिए।
0: आज का जो फिल्म है आज का जो मतलब गोरी हकदारिया गाना सुनने का।
1: कौन सा?
0: गोरी हकदारिया हरी हरी चोरिया।
1: गोरी कलैया।
0: हाँ गोरी कलैया आज का जो मतलब
1: जी। और गाना सुनवाना भी चाहते हैं
0: आप? पहले आपको सुनाएंगे, दोस्त मित्र को सुनाएंगे।
1: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: हाँ दोस्त मित्र का ऐसा। ओके मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 एफएम।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.

0: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में। नमस्ते, जी नेहा जी कैसी हैं? जी जी मैं तो ठीक हूँ, और नाश्ता पानी हो गया
2: है?
1: बढ़िया। तो क्या है आज की फरमाइश?
2: कौन
1: बात नहीं की, अरे सोच के बता दी, 2 मिनट में।
2: मैडम जी आवाज़ बहुत अच्छा है।
1: क्या बोल रही है, एक बार और बताइए। तो
2: बोल रही हूँ आपका आवाज बहुत अच्छा आता है। दीदी मैडम जब आती है तो पहले
1: जी
2: ऐसा ही आपका आवाज आता है, इसीलिए घर पर बोलते
1: हैं। चलिए, वैसे आप भी बहुत अच्छा बात करती हैं।
2: मेरा आवाज और अच्छा नहीं आता है?
1: नहीं नहीं, आपका भी आवाज अच्छा। तो फिर गाना याद आया आपको?
2: गाना याद सुना दीदी, साहिबा।
1: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी चाहती हैं आप?
2: गाना हाफी मैडम को, अब इतना कागजे सब सुनता है इसको, अब दो सब सुनता सोता था उससे का।
1: ओके नेहा जी, तो फिर गाना प्ले करते हैं आपका। नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 FM में।
0: जी मैम, मैं सिकंदर बोल रहा हूँ। मैं स्कूटर,
1: कैसे हैं आप?
0: अच्छे हैं मैम, आप कैसे?
1: जी मैं भी बढ़िया
0: हूँ। मैम की गाना सुने के बाद
1: बता दी,
0: तो जब मियाँ बीवी में तकरार होता है, मियाँ बाहर होता है, बीवी अंदर सोती है, यही वाला गाना सुना।
1: क्या आप गा के मुझे बता सकते हैं दो लाइन?
0: नहीं आता है मैम।
1: चलिए कोई बात नहीं, तो सुनाना भी चाहते हैं।
0: सबसे पहले आपको मैम, जितने रेडियो रिंकिंग सुने सभी को, और एक कमरान भाई उनको सुनाना चाहते हैं।
1: जी जी, प्ले करते हैं गाना आपका।
0: कब बजेगा मैम?
1: आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
0: ठीक है
1: जी, तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंकिंग 90.4 FM। वालेकुम अस्सलाम। जब जब

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
5: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्कार मैम, कैसे हैं?
7: नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप बताइए।
6: अभी ठीक है, आप लोग दोहा से?
7: जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
6: हम बोल रहे हैं ओम साइकिल बंजारी रोड ट्यूशन के सामने, गोपालगंज से राघव जी।
7: जी तो कैसे हैं आप?
6: बहुत बढ़िया है, आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं?
7: जी हम लोग भी बढ़िया है।
6: चलिए बढ़िया काम है
7: जी। वो नाश्ता हो गया आपका?
6: जी जी नाश्ता हो गया है, अभी दुकान पे मैं। आपका नाश्ता हुआ है?
7: हाँ हाँ हो गया। तो फिर क्या है
6: आपका नाम मैम?
7: जी मेरा नाम मनोरमा।
6: मनोरमा, अच्छा आज दूसरी बार बात हो रही है।
7: जी जी,
6: आज सॉन्ग चला दीजिएगा, नफरत की दुनिया छोड़ छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार।
7: क्या आप दो लाइन गा के मुझे बता सकते हैं?
6: मैम गाना तो मैं नहीं गाता हूँ, मैं सिलाई करता हूँ।
7: चलिए कोई बात नहीं,
6: कहिएगा तो थोड़ा बहुत गुनगुना देंगे।
7: जी जी बिल्कुल।
6: नफरत की दुनिया छोड़ छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, बस इतना ही।
7: जी इतना अच्छा तो गा रहे हैं आप।
6: कहाँ इतना गा रहे हैं, आप लोग सब शोर चलाते हैं तो आप लोग का अच्छा आवाज आता है।
7: नहीं नहीं आप भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, इसीलिए तो बोले आपसे कि गा के बताते तो सही रहता।
6: उतना हम लोग का टैलेंट नहीं है गाना गाने में।
7: नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। पर जो गाना बताया वो गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
6: पहले तो आपको और जितना रेडियो और इंजन जो सुन रहे हैं सभी लोगों के साथ में सुनना चाहता हूँ, और आइए आपके लिए चाय स्पेशल आया है पीने के लिए।
7: जी जी बिल्कुल आ रहे हैं, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
6: थैंक यू मैम।
7: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो और इंजन 90.4 FM।
6: थैंक यू।

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन में।
0: सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: मैं अहमद अली, करियावाज नंबर एक से। कैसे हैं मैम?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए।
0: हम तो अच्छे हैं। भारती मैम बोल रहे हैं?
1: नहीं।
0: मनोरमा मैम?
1: जी।
0: योर वॉइस, योर चॉइस क्यों नहीं हो रहा है मैम? नहीं है क्या भारती मैम?
1: नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गया इसकी वजह से नहीं चल रहा है, दो दिन बाद चलेंगे।
0: अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। आप कैसी हैं?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप ठीक ठाक है ना?
0: हाँ, हम लोग तो अच्छा ही है। चल नहीं रहा है इसीलिए दिल नहीं लग रहा है, खाली गाना दे रहा है।
1: चलिए, शो भी बहुत जल्द चलेगा।
0: हाँ, ये शो चलता है।
1: जी जी।
0: आज हमको सॉन्ग सुना दीजिए, दीदार मूवी से। दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी। गा के क्या बताए मैम, मेरे सनम बस यूं ही है ना, मोहब्बत बढ़ती जाएगी है ना, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी।
1: जी जी। ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: सबसे पहले तो आपको और अख्तरी को और भारती मैम को, दिलीप भाई को, कमरान भाई को, राघव जी को, समीर भाई को और जो भी रेडियो रिंगल जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को, असलम भाई हैं, फिरोज भाई हैं, सभी के साथ
1: ले सकती गाना आपका।
0: थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए।
1: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगल 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो
4: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम
6: जी, मैं हाजरा बात कर रही हूँ सूरत से।
5: जी कैसी हैं आप?
6: अच्छी हूँ, अपना बताइए।
5: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
6: तो गाना सुनना है
5: जी,
6: कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, मुझे पुराना वाला सॉन्ग है ना, वही वाला।
5: आप दो लाइन गा के सुनाएंगे मुझे?
6: ये गाना है ना जो कि कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना।
5: जी जी
6: वही गाना। दूसरा गाना गा के सुना सकते हैं?
5: ओके तो सुना दीजिए।

0: जी आपको बहुत अच्छा जा रही है जी। थैंक यू मैम। सुनवाना चाहती हूँ आपको, अपने हस्बैंड जी को और ऑल फ्रेंड्स जितने सुनने रहे हैं उन सभी को।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करती हूँ गाना आपका।
0: जी मैम
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। जी जी क्या
1: हाल चाल
0: बा?
1: हाल चाल तो नहीं गड़बड़ा
0: जी। आवाज में कट गया होता
1: और वो भी कट जाता है भाग जाता था और वो
0: तो नहीं
1: जाना जाना सुना दी
0: बता दी
1: तुम्हारा काम है
0: एक बार और बता दी
1: मेरे अंदर तुम्हारा काम है बदनाम है।
0: जी जी और ये गाना सुनवाए के बिचारते नहीं अभी तो फिर प्ले करते हैं जब गाना।
1: नमस्ते
0: नमस्ते सुनत रहे सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो.
3: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: भागे भागे फिरते हैं.
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का. तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं. नंबर है 8029494 पर कॉल करके. तो अब हमें दीजिए जाने की इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM. नमस्कार.
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान.
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM.
5: सुनो दिल से.

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।